0: This is Talk 100.3.
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: अरे बस बस बस बस, सांप ही रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: हा? रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ,
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गा मा वन टू थ्री फोर
1: सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा
2: This is Talk 100.3.

जाना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है,

0: कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: दादा।
0: मोना सुनो तो
1: दादा।

0: करते हो हमें, हम मतलब ये हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ट्रैफिक खत्म हो गई है, कब हमारा रास्ता आ गया है।
1: हम ऐसे ही मैजिकल काम करते रहते हैं अर्शद।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: अर्शद, माय टीम हैज टोल्ड मी दैट यू आर कंटेंट क्रिएटर।
0: यस
1: एंड
0: यस, क्या मैं कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं क्रिकेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, स्पेशली विराट कोहली, बाबर आजम। मैं ये कह सकता हूँ कि विराट कोहली, बाबर आजम मेरी जान है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, ये दो बंदों का नाम जब आता है तो मतलब हम सब चीजें छोड़ देते हैं। मतलब तो आप यकीन माने कि मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हूँ कि मतलब हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है, सिर्फ काम में ही बिजी रहते हैं।
1: हाँ ना।
0: लेकिन स्पेशली मतलब इनके लिए, इन दोनों बंदे के लिए मैं सोशल मीडिया में आया, मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर बना सिर्फ इनके लिए।
1: अच्छा।
0: के, क्योंकि मैं इनको मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मतलब आप भी, अगर आप विराट कोहली की, अगर आरसीबी की अगर आप जानते हैं, 18 साल से कोई भी इनको आईपीएल ट्रॉफी नहीं मिली।
1: कैन यू इमेजिन?
0: हाँ। और लेकिन इन लोगों ने कभी भी गिव अप नहीं किया। मतलब आप मतलब ये मतलब गिव अप नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए। जब हम अपनी लाइफ में कामकाज करते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हम काफी डाउन हो जाते हैं। तो ये देखें, आरसीबी की टीम ने हम लोगों को, ये हमारे लिए कैसी मोटिवेशन है कि इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। ये लोग करते रहे और आज देखे रिजल्ट, बैक टू बैक ट्रॉफी इनको मिली है। तो यही चीज मैं भी अपने कॉन्टेंट क्रिएशन में मतलब लोगों तक ये मैसेज बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए और मतलब करते रहना चाहिए, मतलब लगे रहना चाहिए।
1: ये गिव अप ना करने के लिए अर्शद क्या जरूरी है? मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, या सारी मिली भगत है, ये सब कुछ होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए कि गिव अप ना करें।
0: एग्जैक्टली, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब आप देखें हमारे सराउंड, अगर आप देखेंगे हर जगह नेगेटिव चीजें मिलेंगी हमको। मतलब अगर एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ मतलब एग्जांपल, आपके पास लोगों के पास काफी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास अगर कुछ चीजें मिसिंग हो जाती है तो वो बोलते हैं कि यार मेरे पास ये अच्छा मतलब डिवाइस नहीं था, मेरे पास अच्छा आईफोन नहीं था, मेरे पास अच्छा माइक नहीं था, मैं ये नहीं कर पाया। मतलब
1: लोग जो
0: है मतलब बहाने ढूंढते रहते हैं, नेगेटिव चीजें करते रहते हैं, लेकिन जो चीज उनके पास होती है वो उनको यूज नहीं कर पाते। मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल होता था। मतलब
1: कौन से साल की बात है? 70s, 80s, 90s?
0: नहीं बिल्कुल, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं अगर मैं एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं 10 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तब मेरे पास सिर्फ एक फोन होता था। तब मैं रिकॉर्ड करता था और वीडियोस बनाता था, तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि यार मजा नहीं आ रहा, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर मेरे कुछ ऐसे अच्छे लोगों ने मुझे, मतलब मेरे टीचर्स ने स्पेशली मुझे समझाया कि हाँ, कि आपके पास जितना कुछ भी है आप उनसे खुश रहो, और जो आपकी नीचे मतलब जो आपकी एनर्जी जो है, जो आप पॉजिटिव जो हो, वो चीज आप दिखाओ, भले आपका कैमरा भी अच्छा नहीं हो या आपकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो, वो चीज आप अच्छी बन जाएगी। और फिर मैं वीडियो बनाता रहा और आज के वक्त में आप यकीन माने, अभी मेरे पास आप मतलब हर तरीके की टेक्नोलॉजी है, और मतलब मैं अपना मैसेज जो है सबकी तरफ पास कर सकता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि हमें नेगेटिव चीजों को हमेशा छोड़ देना चाहिए।
1: लेकिन अर्शद, ये जो आपकी टीचर्स ने आपको एडवाइस दी, तो उन्होंने आपको कुछ चार्ज किया था या फ्री में दी थी? क्योंकि फ्री की एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं है, तो जरूर आपने पे किया होगा उन्हें एडवाइस के लिए।
0: नहीं, मैं कुछ मेरे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने, मतलब कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं कभी लाइफ में, जो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसी
1: और आपने सुन ली, आपने वो एडवाइस सुन ली, तो आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, सुपर से भी ऊपर।
0: नहीं, अगर वही जाहिर सी बात है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, मतलब जो वो काफी मतलब लोगों की बातें नहीं सुनते, मतलब हमारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर वो लोग उनकी बात अगर एक मिनट सुन लें तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी।
1: सो नाउ आफ्टर 10 years अर्शद, अगर आपको वो टाइम याद करें कि सिर्फ आपके पास एक सिंपल साधारण फोन था और आपने उसी के साथ काम चलाया, आप होपफुल रहे, ऐसा नहीं था कि ख्वाहिश नहीं थी कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो, लेकिन आप चलते रहे और धीरे धीरे वो समय भी आया कि आपके पास शायद, अब ऐसे लग रहा है, मुझे साउंड कर रहा है کہ آپ کے پاس شاید بیسٹ آف ٹیکنالوجی

0: तो उसके यू नो करीब करीब टेक्नोलॉजी है, और आप उससे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और धूम मचा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, मैं अब अपने सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक आईफोन 17 प्रो मैक्स,
0: ये तो प्रमोशन हो गई।
1: नहीं, मैं खाली बस ये बता रहा हूँ, सिर्फ एक फोन की वजह से हाँ मुझे कैमरे की जरूरत नहीं है, मुझे माइक की जरूरत नहीं है, मुझे लाइट की जरूरत नहीं है, मुझे लाइट की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये एक फोन अपना स्टेडियम में लेकर जाता हूँ, और यही मेरा एक ही फोन से मैं अपना फोन भी, मैं अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, इसी फोन से मेरी वॉइस क्वालिटी भी बिल्कुल क्लियर होती है।
0: ये तो बड़ा जबरदस्त अरशद कनेक्शन हो गया कि विराट कोहली, बाबर आजम आपकी जान है और आपकी जान फोन में है।
1: और इस फोन में मतलब आप देख लें, कैपकट है, आप वीडियोस बनाएं, एक ही मिनट में कैपकट में डालें, एडिट करें और बस अपलोड कर दें, बस खत्म, आपका काम खत्म हो गया।
0: आप कितना टाइम लगा लेते हैं? बिकॉज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी एट टाइम्स होता है अरशद, और इस वजह से लोग इस साइट पर आना नहीं चाहते, हालांकि वो बहुत क्रिएटिव हैं। तो आपका क्या रूटीन है? आप साइड बाय साइड अपना दूसरा ऑन सीरियस लेवल काम भी करते होंगे, या आपका यही काम है?
1: नहीं नहीं, मैं आप 8 to 6 में काम करता हूँ।
0: सी, अच्छा, ठीक है,
1: बिल्कुल यूएई में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है।
0: कहीं भी कोई छोड़ेगा नहीं। नहीं तो अरशद, फिर आप किस तरह जाते हैं? स्टेडियम्स जाते हैं वहीं काम से, व्हेन यू आर ऑफ यू आर डन, तो आप वहां जाते हैं, या घर बैठकर कोई रील आपने बनाई, कोई आइडिया है, कोई टॉपिक है, किस तरह?
1: बेसिकली मेरी वाइफ भी ब्लॉगर है। मैं सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक काम पे बिजी रहता हूँ, फिर 6 बजे के बाद 6 से 8 या 6 से 9 इवनिंग के वक्त कहीं ना कहीं उनको कोलैबोरेशन के लिए जाना होता है, तो मैं उनका एज ए ड्राइवर बन, असिस्टेंट ड्राइवर बन जाता हूँ। तो मैं फिर उनको भी सपोर्ट करता हूँ।
0: यू रोलिंग जी।
1: और हाँ जी, और जब मुझे खुद को टाइम मिलता है, मतलब सैटरडे संडे और जब भी मैचेस होते हैं, मैं मतलब छोड़ता नहीं हूँ। आप देखें, एक एक वीडियो बनाने के लिए ना
0: जी जी
1: हाँ ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट रिकॉर्डिंग होगी मोबाइल से।
0: अच्छा,
1: 5 मिनट आप उसको कैपकट में डाल दो, एडिट कर दो, और 2 मिनट में उसको अपलोड कर दो।
0: 2 मिनट में जी, यूएई में तो 2 मिनट में हो सकता है, आई थिंक दूसरी जगहों पर 2 घंटे भी लग जाते हैं।
1: बिल्कुल, मैं आपको मैं बता रहा हूँ ना कि मैं 10 से 15 मिनट में आप एक अच्छी सी वीडियो जो है ना, आप डायरेक्टली सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो। और आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है
0: जी जी,
1: कि आप अगर इंस्टाग्राम में वीडियो डाल रहे हैं तो अगर आपने सेटिंग सही की हुई है तो वो डायरेक्टली फेसबुक में भी अपलोड हो जाएगी।
0: सही,
1: डायरेक्टली थ्रेड एप्लीकेशन में भी अपलोड हो जाएगी। तो आपको मतलब ये है कि आप सिर्फ एक सोशल मीडिया में एक वीडियो डाल रहे हो और वो डायरेक्टली 3 सोशल मीडिया में जा रही
0: तो
1: है।
0: ये तो अरशद अब ऐसे लगता है कि वैसे तो हीरोइन कहीं बीच में आई जाती है मूवी में, आपने तो बिल्कुल क्लाइमेक्स में ही उनको लेकर आए, वो आपका अक्सर अच्छा साथ देती हैं, सपोर्ट बनी हुई हैं। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि लाइक्स और लव और कमेंट्स और फॉलोअर्स ये कैसे लाएं? ये भी क्या टेक्नोलॉजी के साथ है या ये किस्मत पे छोड़ दें?
1: नहीं, किस्मत नहीं, मेरे ख्याल में आपको जो चीज पसंद है आप बस उसी चीज में लगे रहें, और एक ही सब्जेक्ट पे आप काम करते रहो।
0: अच्छा,
1: यहाँ पे काफी लोग है ना जो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ
0: जी जी,
1: कि मैं अभी एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट के ऊपर अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ तो अगर मैं कहीं ऐसे रेस्टोरेंट चला गया जहाँ पर अच्छा खाना है, तो अच्छा, मैं अगर इन केस में अगर उस खाने की वीडियो बनाकर अगर रील में डालना शुरू कर दूं तो मुझे वो व्यूज नहीं मिलेंगे, वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
0: हाँ, बिकॉज वो खाने वाले हैं ही नहीं आपके।
1: एग्जैक्टली
0: हाँ,
1: तो आप लोग कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर है अगर वो फूड लवर है हाँ, तो वो सिर्फ फूड्स के ऊपर वीडियोस बनाए। अगर कोई बंदा टूरिज्म पे बनाता है वो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर बनाए, अगर कोई बंदा क्रिकेट के ऊपर है वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही बनाए बस। अब मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी अच्छी जगह जाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे मतलब मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि एग्जांपल अगर मैंने फोटोज ले लिया तो मैं उनको स्टोरीज पे लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उनको रील पे डालूंगा तो वो मिलियंस में व्यूज नहीं जाएंगे।
0: सही, फोकस रहना चाहिए, जो आपका पैशन है बस उसी को फॉलो करें, हर जगह पांव ना फैलाएं। जी जी, तो ये बहुत ही अच्छे टिप्स आपने हमें दी। ये कोई चार्जेबल है या ये फ्री में आपने हमारे लिसनर्स के साथ अरशद, क्योंकि आपने तो 10 साल का एक्सपीरियंस अपने साथ रखा है और आपने शेयर किया, किस तरह लोग आपको फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि क्रिकेट लवर्स तो यू नो इट रन्स इन आवर ब्लड अरशद, तो प्लीज बताइए कि किस तरह आपको सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं।
1: मेरा जो पर्सनल अकाउंट अरशद मोहम्मद हनीफ के नाम से है @
0: अच्छा।
1: ये मैं सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक
0: छाए हुए आप हर जगह जी और आज तो टॉप 100.3 पर भी आ गए जी वेरी नाइस।
1: और मेरी वाइफ भी एक बहुत बड़ी ब्लॉगर है।
0: ओ बहुत बड़ी, अच्छा क्या नाम है उनका?
1: मतलब फूड वेंचर के नाम से।
0: फूड वेंचर, वाओ अच्छा।
1: तो वो इंटायर यूई को प्रमोट करती है, रेस्टोरेंट्स हो गए, टूरिज्म हो गए।
0: गोल क्या है आप दोनों का? आपसे स्टार्ट करते हैं अरशद, कि अब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड माशाल्लाह यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड व्हाई नॉट, 10 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, यू डिडंट गिव अप। सोशल मीडिया पे लोग वाकई इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और वो रिजल्ट नहीं मिलता तो दे इवेंचुअली गिव अप। लोग भी फिर आपको पता है कि बैठे हुए होते हैं, तुम तो इतने अच्छे से काम कर रहे, हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप आगे जा रहे हैं। कितना आगे जाएंगे, क्या गोल है?
1: अब यकीन माने मैं यूई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ।
0: sure.
1: हमारी हमारी फैमिली, मतलब अगर बात करें, मेरी मदर जब 1 साल की तब से यहाँ पर है,
0: अच्छा,
1: तो शायद
0: अच्छा,
1: उनको शायद 55 ईयर्स यहाँ पर हो गए हैं। और हाँ, तो आप यकीन माने कि हम जो, मतलब शायद हो सकता है कि हमारी कंट्री नेशनल, मतलब होम कंट्री यूई नहीं हो सकती, लेकिन हमारे लिए ये हमारी ये होम कंट्री ही है।
0: हार्ट हो तो वहाँ होम आ ही जाता है।
1: एग्जैक्टली हमने अपने बचपन यहाँ पे गुजारा, हमने अपने स्कूलिंग यहाँ पे की, हमने अपने लाइफ के सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे गुजारे।
0: sure.
1: तो हमारे लिए यूएई एक, मतलब हमारे घर के जैसा है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो हमने सोशल मीडिया सिर्फ इसीलिए ही स्टार्ट किया कि हम जो यूएई के बहुत ही अच्छे चीजें जो है लोगों तक पहुंचाए, इंटायर वर्ल्ड को दिखा सके। हाँ, और मेरी वाइफ भी सिर्फ, हम आप देखें, हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें फैलाते हैं, पॉजिटिव मैसेज सबको देते हैं। भले अगर कोई ऐसी, अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जिनको हमारा सपोर्ट चाहिए, मतलब काफी लोग हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर इनकेस अगर वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग जाते हैं उनके लिए वीडियो बनाते हैं।
0: ये अब आपने बात की ना, ये तो आपने, मतलब सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट अरशद, तो आप इस तरह लोगों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर हेल्प के आदि भी हो जाते हैं अरशद, ये तो बड़ा मुश्किल गंभीर काम हो जाएगा।
1: होता है कभी कभी, एग्जांपल मैं कहूँ, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार फेवर मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हम उनके बाद फिर थोड़ा बहुत उनको इग्नोर बैलेंस करना कर लेते हैं।
0: तो गोल ये है कि पॉजिटिविटी फैलाएं, जो मुझे आपकी बात से समझ आया, और यूएई को उस तरह प्रमोट करें जो सही, आप कह लीजिए कि न्यूज है, वो आगे पहुंचाएं, वो खेल के मैदान से हो या रेस्टोरेंट की टेबल से हो, तो आपका काम है पॉजिटिविटी फैलाना और गोल तो होते ही रहेंगे जी।
1: एग्जैक्टली बिल्कुल, बस पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब अच्छे से रहो, अच्छे से मिलो
0: और रहने भी दो, रहने नहीं देते ना लोग।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया अरशद। एंड आपकी मिसेस का नाम क्या है?
1: फरहाना अरशद उनका नाम है,
0: फरहाना अरशद। और अरशद आप भी इसी तरह जुटे रहिए, अच्छा काम करते रहिए, और पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है, लेकिन थोड़ी उसकी वेव्स कभी कभार स्लो हो जाती हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी की वेव्स बड़ी तेज होती हैं, लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकती, उसके पाँव नहीं होते। तो आप इसी तरह अपना काम करते रहिए और आगे 10 सदियाँ इसी तरह अच्छे काम कीजिए। हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: Thank you so much.
1: Thank you so much. Thank you so much.
0: Straight from the heart, that was Arshad. And of course, bringing people up, those who are almost already have lost hope. And that is, you know, ek positivity dete bhi hain. To jo positivity dega, to supply to kam hoga na. So uske liye he is also having people around him who give good advice. And he makes sure whether he pays for the advice or it's a free advice, he takes it, works on it and keep going. I'm sure in the beginning he may have not kept or, you know, taken into consideration whether people like it, whether he has any popularity on social media, where there are likes, there are followers, there are comments or not. He just kept going, and today from his voice it sounded like he's very proud in what he's doing, and this is not the only stuff he's doing. He's working as well. Oh, to puchna bhuli gaye kaun si industry se, but nevertheless I hope this positivity from Arshad, the through talk 100.3, has helped you in some way or the other, even if it's a smile that came to your face. Sponsored by Talk 100.3. With this, of course, kahan reh gaye hum kahan the, hum bhi technology ke saath the aur cheez tak pahunche the, and these are the days that are celebrated around the world. So just to give you a taste of what all is observed when it comes to our lives around the world, and some of the days are made extra special. Now, you will be surprised. This next one is even more on a lighter note. Light as a feather, or light as a fur rather, because today on 4th of June, National Hug Your Cat Day. It's a light-hearted observance encouraging pet owners to appreciate their cats. Of course, if your cat is not nakchadi and nakhre wali, because usually cats are very selfish animal, but you know, the people who are full of love, they want to give love whether they get it back or not. And that is when it comes to your cats. Some of them are very, very loving. National Hug Your Cat Day. So that is something many people around the world are celebrating. And when we talk about the major day today, it is International Day of Innocent Children, Victims of Aggression. And it was always that way. But now, thanks to social media, there is awareness, there is news, knowledge. We have got to know what's happening, where, when, how much. So when we talk about this day, the most significant United Nations observance day today, even then, it was when it was first established, sadly, even today, all the more. So it was established by the United Nations in 1982 to acknowledge the suffering of children who are victims of physical, mental and emotional abuse, particularly in situations of war and conflicts around the world. When it comes to the key facts, observing a day like this, very important, is it's observed every year on 4th of June, obviously. It focuses on protecting children's rights, highlights the impact of, conflicts on children worldwide, supported by United Nations agencies such as United Nations and UNICEF. So when it comes to this day, our own individual responsibility as well, because you know, it has been on this concept of child labor. So anywhere you see, of course, thankfully here in UAE, there are strict laws. But back home, at times, there are very heartbreaking stories. So make sure you create that awareness in your area, jo aapka mohalla hai, wahan par educate people that this is their age to learn. And education is the best form of learning. Help those children who cannot help themselves, who don't have parents, guardians, in one way or the other. And so many people, thankfully, do that as well, and do it so confidentially that they don't know which child they are supporting, and the child also doesn't know who is supporting them. So this is, you know, the empathy of another level. But if not to that level, each to their own capacity, one should be going ahead and helping. Why it was created, the day was basically established, like I said, 1982, but it was not established today. It was August 19, and the precise day they chose was 4th of June. It originally focused on children impacted by conflicts. It has since expanded to recognize all children worldwide who suffer because of wars, conflicts, armed conflicts, terrorism, displacement, exploitation, violence. Heartbreakingly, the list goes on. Excuse me. So the observance is to seek acknowledge the suffering of child victims. And that is why in the beginning I said we need a heart, not a heart which has a stone, but has a lot of love, a lot of empathy, a lot of sympathy. Raise awareness on a day like this about children's rights throughout the year, and today especially. Promote protection of children during such conflicts, and encourage governments, organizations to prevent violence against children. Support rehabilitation and recovery for affected children. So there are various sides to it. One is, you know, raise your voice, create awareness, and then there is another side to go ahead and help them, whichever tickles your fancy, whichever you feel more passionate about. Because whenever you want to do something, you sprinkle a little passion with it, and it becomes all the more strong and magical. The effects are even more stronger. So how children are affected by these conflicts, we all know it's pretty obvious. There is physical harm, at times could be death and injuries, disability, malnutrition, lack of healthcare. Then there is emotional and psychological trauma attached to it. And just to be on the surface, namely anxiety, depression, post-traumatic stress, stress, fear and insecurity. This is all for children, right? So also displacement, where millions of children are forced to flee their homes and become refugees or internally displaced persons. There is lack and loss of education. Schools are often destroyed or closed during challenging or conflicting times, disrupting children's education. And then not to forget, very important, and that's exploitation. Back home, still going on. So do your best whenever you can. Some children do become vulnerable to child labor, human trafficking, forced recruitment, and also early marriages. It all comes under this. So this is the day one can be mindful of. Interesting facts before we head towards the break, that more than half of the world's refugees are children. And here, United Nations has a dedicated office, which is called Office of the Special Representatives of the Secretary General for Children and Armed Conflict, that focuses specially on protecting children in conflict situations. The day is observed by governments, schools, humanitarian organizations, and child rights groups worldwide. And we right here at Talk 100.3, also adding our bit. At times, doesn't matter how big or small, it's always the quality. So when it comes to our listeners, what is that one childhood memory that still makes you smile today? You being a child, your good times, your challenging times as a child. You can share it with us. Which teacher, which parent, or somebody mentor? And Arshad, came back or when he was sharing, and unconsciously he shared his experience 10 years back, of course, younger at that time. And it was his teacher who brought out, which was already planted in him, that seed was there, and teacher just watered and it bloomed so beautifully. What about you? Do you have a mentor at that time as a child, or perhaps a teacher who said something, or maybe your parents, that stuck with you and was your known unknown, consciously or subconsciously was a cushion, now that you look back, that time, that advice did all the trick? So many questions I can ask you, but only if you are ready to answer on 0586861003. Won't invite you on a call because we're heading for this break, and then our lovely listeners, they say, what is this? You're not picking up the call, because obviously when we are live, you're always welcome. When we are not, then we have to waste your time. I mean, I have to put you on hold. I don't want to waste your time. With this, moving ahead, bringing you BBC News, then Muriel Disa comes in with sports news. And then we have a nice and lovely melody. Kahan gayi? Here it is. And it's talking about, again, childlike days. You know, kura kagaz tha man mera. And since then... So much has been scribbled, doodled on that kora kagaz. It might be very done very disciplinedly, I'm not really sure. But Kishore Kumar takes you to that time of your life. And then a very interesting conversation. Yesterday was International Cycling Day. So one of our callers called in, and generally cycles around, not one of those professionals or enthusiasts and all, but very interesting conversation. So that is something we're going to plug in for you, and then we'll join you back with some more news around here locally and otherwise as well, that will help you stay informed with Talk 100.3, part of Fun Asia Network.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business. The smooth music and live talk with Sobia Khan. Talk 100.3. This is Fan Network News from the BBC.
3: BBC News with Moira Alderson. Israel and Lebanon have agreed to renew their fragile ceasefire and create a number of pilot security zones where the Lebanese army would take control. The agreement requires Hezbollah to stop all firing and to withdraw from southern Lebanon. The Iran-backed group has strongly opposed the negotiations. The US House of Representatives has passed a resolution calling for President Trump to withdraw US forces from around Iran or win approval from Congress to continue the war. The resolution is largely symbolic, as Mr. Trump has a veto. SpaceX has officially filed for what's expected to be the largest IPO in Wall Street history. Analysts say this could see Elon Musk become the world's first trillionaire. Top artificial intelligence executives in the US are calling for stricter regulations to prevent AI from being used to develop biological weapons. They say there should be mandatory screening of orders for synthetic DNA to prevent criminals from engineering deadly pathogens. The US Department of Agriculture has confirmed a case of New World screwworm in Texas, the first in half a century. The flesh-eating parasite can devastate livestock herds. Beijing's banned four New Zealand lawmakers from visiting China for a year after they travelled to Taiwan. It's the first time China's imposed such travel restrictions on New Zealand. The government of Fiji has rejected plans by an Australian billionaire to import hundreds of thousands of tonnes of rubbish to be burned for energy production. The proposal was blocked over severe environmental and public health risks, following concerns that it could become the Pacific's ashtray. BBC News.
2: Fan Network News from the BBC. Talk 100.3 Sport.
4: From the sports desk, this is Muriel Deesa. In football, Manchester City have had an opening bid for midfielder Elliot Anderson rejected by Nottingham Forest. According to the reports last week, the 23-year-old England international is leaning towards a move to Etihad Stadium over Manchester United. There is a growing expectation Anderson will leave the City ground this summer, and City have now formalised interest with their first bid rebuffed, as reported by The Athletic. In tennis, Aryna Sabalenka would not say it, but there is an inescapable feeling that another golden opportunity to add to her dynasty has slipped through her fingers in Paris. The world number one has been left looking at her wounds after a 3-6-7-5-6-0 defeat by Russia's Diana Schneider in the French Open quarterfinals. The Belarusian has been the dominant force in women's tennis for the past few seasons, facing opponents on her way to 11 WTA titles and a 93-week stint at the top of the rankings. In Formula One, Ferrari driver Charles Leclerc has agreed a new long-term contract with the team. The deal for the 28-year-old comes in the build-up to his home Grand Prix in Monaco this weekend. Charles Leclerc signed the last deal in 2024, and Ferrari said that this renewal will keep him with the team for the coming seasons. He has a superb record in Monaco in the past 6 years. He has qualified on pole three times, been second on the grid twice and third once. In cricket, the New Zealand men's team will kick off their international home summer later this year by hosting India for an all-format tour from October 22nd to December 1st. The tour of 12 matches will feature 5 T20 internationals, 5 ODIs and 2 tests to be played across 5 major venues, making it the most number of international matches scheduled for an inbound tour in New Zealand cricket history. New Zealand will also host Sri Lanka for an all-format tour of 3 ODIs, 3 T20 internationals and 2 tests in late January and February to finish their home international summer that will see 42 days of international cricket across 8 cities. The Sri Lanka series will take place once New Zealand return from an away tour of 4 tests in Australia scheduled for December and January. And that's all from the Sports Desk with me, Muriel Deesa, only on Talk 100.3, part of the Phanisha Network.
2: This is Life Talk with Sobia Khan. Talk 100.3. Talk music brought to you

0: और वर्ल्ड क्रिकेट की जो हिस्ट्री है
1: जी,
0: अभी भी मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान क्रिकेट की स्टोरी कुछ अलग है, कुछ अजीब है। इसकी हर एक दो तीन महीने या एक साल की जो स्टोरी है उसके ऊपर अगर हम चाहे तो बड़े से बड़े मूवीज वगैरह हम
1: बिल्कुल
0: बना सकते हैं। और जैसे 93-94 में अफगानिस्तान की जो हालत थी
1: जी,
0: यानी हर दो किलोमीटर में एक कमांडर था और एक दूसरे से हम लोग लड़ रहे थे। तो उस वक्त मैंने अभी भाई को भी बोला कि एक रीज़न थोड़ा ये हो गया था कि हमने पिशावर में अंडर 19 के लिए ट्रायल दिया, तो लोगों ने सिर्फ ये इसलिए कि वो पूछ रहा था कि आपका आप तो अफगानी हैं पाकिस्तानी ने, तो मैंने कहा कि ये तो सच है मैं अफगानी हूँ
1: जी।
0: तो मैंने उसको, उसने मुझे कहा कि आपको सेलेक्ट भी हुआ था
1: ओके।
0: तो फिर उन्होंने कहा कि यार आपके लिए नहीं हो सकता,
1: वरना
0: 5-6 बॉल मैंने किया और उन्होंने सेलेक्ट किया। उन्होंने कहा, तो जब उन्होंने रिजेक्ट किया मैंने बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और
1: दिल टूटा होगा ना,
0: बहुत ज़्यादा
1: जी
0: दर्द। मैंने उम्र भी 18-19 साल का उसी वक्त मेरा उम्र था, तो मैंने सोचा कि अफगानिस्तान का क्रिकेट हमें बनाना होगा।
1: बिल्कुल, क्या बात है।
0: तो अगर मैं उस वक्त की स्टोरी अभी तक बताऊँ तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट
1: आपने
0: कुछ, आप, कुछ मैं आपको
1: आपने जो शुरुआत करी है ना कि एक छोटा रिजेक्शन जो हुआ है उसके बाद से आपने ये डिसाइड किया कि ये नहीं डिसाइड किया कि मैं और कहीं जाके खेलूंगा, आपने कहा कि मेरे मुल्क में अब मैं क्रिकेट लेके आऊंगा। ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त एक ये थॉट बहुत कम लोगों की होती है ये, और वो भी एक 17-18 साल की उम्र में अगर ये सोच थी आपकी, उसके बाद आज जो है आपको कहा जाता है कि आप फाउंडिंग फादर ऑफ क्रिकेट हो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान क्रिकेट के पहले कप्तान रह चुके हो। ये जर्नी आई एम श्योर चैलेंजिंग थी, आसान नहीं थी ये जर्नी। किन किन को आपको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं यार आओ क्रिकेट खेलते हैं, कैसे हुआ ये, कहानियां क्या थी उस वक्त?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे घर में मेरा अबू और उनके जो भाई 10-11 भाई थे,
1: हाँ,
0: तो इन लोगों से भी बहुत प्रॉब्लम था
1: okay.
0: लेकिन मेरा जो बड़ा अंकल था वो मेरा साइड ले रहा था, तो यानी उन लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त भी जब मैं काबुल आया तो हमारे करेंसी एक्सचेंज का कारोबार था
1: okay.
0: तो मैंने पेशावर से अबू को बहाना बनाकर कि मैं डॉलर काबुल में बहुत महंगा है, मुझे डॉलर दे दो मैं उधर बेचता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं, वो हर चीज़ को बॉल बोलते थे, हर स्पोर्ट्स को बॉल बोलते
1: अच्छा।
0: थे। तो उन्होंने कहा नहीं आप बॉल खेलने के लिए जा रहे हो। तो मैंने कहा कि अफगानिस्तान में तो बहुत सख्त लड़ाई है, हालात अफगानिस्तान के बहुत अजीब और गरीब है, तो नहीं मैं डॉलर बेच के अब तो, लेकिन मैंने प्लान बनाया था
1: अच्छा।
0: मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, हर जिस दिन से मैंने स्टार्ट लिया है उसी दिन के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। 2009 और 10 तक जो हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया
1: जी,
0: तो उस वक्त तक जब मैं कैप्टन रहा, प्रेसिडेंट रहा, और क्या बताओ यार, एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहा था, और आईसीसी और एसीसी के
1: जी,
0: जो पहले जो स्टार्ट के मेंबरशिप है वो सब मेरे नाम पे है
1: बिल्कुल।
0: इवन ये जो लोगो
1: अफगानिस्तान का जो लोगो है जी,
0: ये 1997 में मैं घर में बैठ के अफगानिस्तान के जो हिस्टोरिकल लोगो है उनसे थोड़ा कॉपी करके और क्रिकेट उसमें ऐड करके, तो
1: क्या बात इनके है,
0: साथ कॉन्स्टिट्यूशन बना के मैंने ये बनाया है।
1: ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा कहीं पर लगता है कि ये कहानी इतनी गहरी है कि एक इंसान ने बैठ के पहले तो ये सोचा कि मैं अपने मुल्क में क्रिकेट ले आऊँगा, उसके बाद अपने घर वालों से भी आपको चैलेंजेस आए, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस मुल्क में चैलेंजेस ऑलरेडी हैं, तकलीफ़ें ऑलरेडी हैं, वहाँ पर आप अपना कारोबार ना संभाल के कहोगे कि नहीं मैं बॉल खेलने जाऊँगा, तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ होगी। और वहाँ से सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलना, उस पूरे क्रिकेट के सेटअप को स्ट्रक्चर बनाना, उसके लोगों को बनाना, पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्रिकेट का, आईसीसी का मेंबरशिप पाना, एसीसी का मेंबरशिप पाना, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना, इन सारी चीज़ों का आपको इंस्पिरेशन आया कहाँ से?
0: वो रीज़न तो मैंने बताया कि एक ही रीज़न था,
1: वो शुरुआत में जो पेशावर में हुआ,
0: शुरुआत में जो हुआ उन लोगों का ये हक बनता था
1: बिल्कुल,
0: वो कंट्री था, वो बोल रहा था कि आपके पास

0: आईडी पाकिस्तानी नहीं है, अफगानी है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो उनका हक बनता था। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं बहुत कम उम्र का था, ये मेरे खून में ऐसे है कि मैं किसी भी चीज़ को जब टारगेट करता हूँ तो छोड़ता नहीं।
1: ओके,
0: तो एक दिन मेरे अबू ने, किसी ने उसको कहा कि आपके तो सात बेटे हैं, हम भी सात भाई हैं
1: माशाल्लाह,
0: तो उसको बोला कि बेटे तो इतना ज़्यादा है, सबसे बड़ा ये भी है, लेकिन इनके साथ तो आप जैसे बहुत यानी एहतियात के साथ आप इनके साथ बात करते हो। तो अबू ने उसको, मैं जब उधर से बाहर निकला तो मैं सुन रहा था, तो उसका उनको बोला कि ये कुछ अजीब फिक्र की और तबीयत के आदमी है, ये एक बात करो, हाँ कहाँ तो वो करेगा, ना कहाँ तो नहीं करेगा।
1: ओके,
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी लिहाज से जो फितरती मेरा जो वो है, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसका स्टोरी ये है कि जब मैंने डॉलर भेज दिया तो मैंने किसी से पूछा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या स्पोर्ट्स कोई भी कमेटी हो मुझे एड्रेस दे दे, तो किसी ने एड्रेस मुझे बता दिया। अभी भी मैं उस एड्रेस का अभी मैं बताता रहा, अभी तो अफगानिस्तान स्पोर्ट्स का एड्रेस गाजी स्टेडियम है उधर स्पोर्ट्स, लेकिन उस वक्त काबल शहरीनाव
1: ओके
0: न्यू सिटी, जहाँ पे अभी बीबीसी का ऑफिस है,
1: ओके
0: ये अफगानिस्तान ओलंपिक का ऑफिस था।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इधर मैं आ गया तो लेवाल के नाम से, उसका लास्ट नेम लेवाल, वो बता रहा था कि उनसे मेरा मुलाकात, अब वो फौत हो गया उसका, तो उसको उससे मेरा मुलाकात हुआ। मैंने कहा कि मैं अफगानिस्तान आया हूँ और अब अफगानिस्तान में क्रिकेट को आगे बढ़ाना है और क्रिकेट को जो है रजिस्ट्रेशन करना है और मैं आगे बढ़ा दूंगा इंशाल्लाह मैं अपने। तो मैंने जब उसको ये कहा, उसने कहा कि तुम पागल हो, अभी देखो आपको आवाज़ आ रहा है। मैंने कहा, उसने कहा कि कितना बड़ा लड़ाई, अभी बड़ी बड़ी हथियार वो जो है एक दूसरे के खिलाफ, आप इस तरह करो, आप अभी इमिडिएटली काबुल से निकलो और जाओ वापस पेशावर। मैंने कहा मैंने नहीं जाना है। फिर उसने एक चीज़ किया कि मुझे एक लेटर मैंने रखा है अपने
1: अच्छा,
0: तो एक लेटर दिया, उसने कहा कि तुम जाओ अफगानिस्तान के नाम पे पेशावर में अफगानी जो रिफ्यूजी जो भी है आप इकट्ठा करो, क्रिकेट उधर से स्टार्ट करो। तो वैसे ही मैंने किया।
1: ओके,
0: तो इधर से लेटर लिया और पेशावर में शाही बाग में उस्मानिया ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड है, तो वो मैंने लिया और अखबारों में जो है मैंने अनाउंसमेंट दिया कि हम अफगानिस्तान का क्रिकेट बना रहे।
1: अच्छा,
0: तो काफ़ी लोग आए गए ट्रायल में, तो हमने थोड़ा पूरा ट्रायल लिया। फिर काबुल आना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन हमने उन उधर अफगानी लोगों के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया किया और नेट प्रैक्टिस उनके लिए, खाना पीना कैंप सब कुछ उनके लिए बनाया, क्योंकि हमारा बिजनेस का लेवल थोड़ा अच्छा था तो इन लोगों के लिए वो हमने बनाया। तो 1997 में जब गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो उस वक्त जो रिजीम है अभी इन लोगों का फर्स्ट स्टार्ट गवर्नमेंट आया
1: जी,
0: तो अभी जो फाइनेंस अभी जो प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ द मिनिस्टर्स है, तो ये मुल्ला मोहम्मद हसन, ये उसी वक्त कई दिन बीमार था और हमारे घर में पेशावर में था, तो उनको हमने बताया कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसने बोला कि ये क्या है, ये मत खेलो। मैंने कहा ना हम खेलते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट आया तो इनके जो उस वक्त ये वाइस यानी क्या बताऊँ कि वाइस मिनिस्टर यानी डिप्टी मिनिस्टर
1: था जी,
0: तो मैं इनके पास अफगानिस्तान कैपिटल में गया और मैंने कहा कि मैं वही उस फलां जी साहब का आदमी बेटा हूँ, तो आप मुझे, उसने पहचान लिया। मैंने कहा, उसने उसी वक्त कहा कि हाँ आप आए हो और क्रिकेट के लिए आए हो।
1: क्या बात है,
0: क्रिकेट के लिए आए हो। तो हमने सजेशन और वो जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हमने वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से सजेशन बनाया ऑफिशियली और लाया, उन्होंने साइन करके और क्रिकेट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमने अफगानिस्तान में रजिस्ट्रेशन मिला और हमने आईसीसी के लिए
1: जी
0: काफ़ी मुल्कों से राबिता किया और काफ़ी मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन हमने मंगवाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन देखकर अफगानिस्तान के हालात देखकर फिर हमने स्लोली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और आईसीसी के साथ कांटेक्ट हमने कैसे किया, मैं आपको बता दूं कि ये आपको अजीब लगेगा, हमारे कारपेट का कंपनी था।
1: अच्छा।
0: हम कारपेट बनाते थे बगैर हम जो करेंसी एक्सचेंज काम करते, तो बड़े कंपनी था, हम 500-600
2: माशाल्लाह
0: लोग उसमें काम करते थे। तो हमने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि एक अंग्रेज जो एक कंपनी के साथ उसका पार्टनरशिप था, तो काबुल में जो हमारा ग्राउंड था, तो एक वो रास्ते पे जा रहा था, तो उसने क्रिकेट देखा, वो इंग्लैंड वाला था।
2: अच्छा।
0: हाँ, ब्रिटिश था।
2: ओके।
0: तो वो अंडर 19 इंग्लैंड वो खेला था।
2: ओके।
0: जब उसने देखा कि क्रिकेट खेल रहा है, तो अचानक उसने गाड़ी रोका और आ गया, मैं भी उधर ग्राउंड में था। तो उसने कहा कि मैंने उसका, मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश उस वक्त भी मुझे आता था, तो मैंने इंग्लिश में उससे बात की। उसने कहा कि तुम, मैंने कहा आई एम प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट फेडरेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द क्रिकेट गेम इन अफगानिस्तान। और मैंने एक टॉपिक उसको बताया कि आई थिंक दिस इज द ओनली वे टू सेव द अफगान यूथ, टू सेव द अफगान पीपल बाय स्प्रेडिंग स्पोर्ट्स इन अफगानिस्तान।
2: एब्सोल्युटली।
0: तो उनको ये बहुत पसंद आ गया। उसने कहा कि कल हम, आप हमारा मेहमान है। तो वो इंग्लैंड जा रहा था, तो मैंने कारपेट बनाया ACC, ICC, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, काफ़ी मुल्कों के लिए कारपेट बनाया और रात दिन बच्चों को बोला कि इस पे काम करो। उसमें क्रिकेट ग्राउंड बनाया, पिच बनाया, जिस मुल्क को भेजना है उसको हैंड वोविंग,
2: ओके,
0: उसका नाम लिखा। तो उसके लेटर जब ये इस आदमी ने, मैंने ये कारपेट दिया उनको भेजा, उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सबसे बहुत प्लस, और उसने उस लेटर में लिखा है मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप देख ले, मेरे रखा है, मेरे पास है। तो उसने कहा कि टोटली अनएक्सपेक्टेड द गिफ्ट यू सेंड दैट अनएक्सपेक्टेड।
2: वाओ।
0: सो उन लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, कांटेक्ट शुरू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन का तबादला, नजरियात का तबादला। 3 साल इस रोटेशन में हमने 3-4 प्रोविंशियल टूर्नामेंट बनाया, अच्छा पिच बनाया, वो तो अलग अलग स्टोरी है। तो 2000 में हमने एक टूर किया पाकिस्तान, जो मैं कैप्टन भी था
2: जी,
0: और मेरा परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि वो दिखलावा में ना आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पिशावर कंबाइन, इस्लामाबाद कंबाइन के ख़िलाफ़ किया। तो उधर से ICC के जो रिप्रेजेंटेटिव आया था, उन्होंने ICC को बताया कि दे आर टोटली वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टीम। तो ICC ने भी
2: एक्सेप्ट कर लिया
0: और ICC और ACC का दोनों का मेंबरशिप एक ही दिन पे अनाउंस हुआ।
2: क्या बात।
0: तो उसके बाद स्टोरी बहुत ज्यादा है
2: पर
0: तो मैंने आपको
2: उसके बाद ये जो शुरुआती स्टोरी है, जाहिर सी बात है, यू नो, ये बहुत कम लोगों को पता होती है। और हम, मुझे पता, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप और आप भी जो है आराम से समय निकाल के आए हैं और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट की स्टोरी क्या है। आज हमें राशिद दिखते हैं, आज हमें गुरबज दिखते हैं और इतना बड़ा बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर जो खेलते हैं वो बड़ा कमाल होता है, पर जब उनकी कहानियाँ, उनके पहले जो आए थे उनकी कहानियाँ और जहाँ से शुरू हुई है ये कहानी, अगर कोई समझे तो समझ में आता है कि आज के जो खिलाड़ी हैं वो सारे इस वजह से आज खेल पा रहे हैं, आज इस वजह से वो पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है, आपने मेहनत की है। यू नो, एक अफिलिएट मेंबर नेशन बनना, आज की तारीख में भी देखें दुनिया भर में काफ़ी सारे अफिलिएट मेंबर नेशंस हैं क्रिकेट के, ICC के। अफिलिएट नेशन से एसोसिएट नेशन बनना, इसमें फंडिंग अलग मिलती है। एसोसिएट नेशन से 4 साल के अंदर फुल मेंबरशिप, ये जो जर्नी थी, 4 साल की जो जर्नी थी, ये जर्नी किस तरह से हुई है, ये जरा इससे थोड़ा कुछ बताएं।
0: असल में मैं एक चीज आपको बता दूं, जब 2001 में जो ICC और एसोसिएट का एफिलिएट मेंबरशिप हो गया, मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस के बजाय कि हम फुल मेंबरशिप पे फोकस करें, उसका भी मैं बता रहा हूँ, वो भी बता दूंगा कि फुल मेंबरशिप कैसे हुआ और उसके लिए क्या हुआ और किसने किया, तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एफिलिएट मेंबरशिप से शुरू होकर फौरी जो है 2003 में हमने ACC ट्रॉफी खेला
2: जी,
0: अंडर 17 खेला इंडिया में, हैदराबाद में,
2: राइट।
0: उसके बाद मलेशिया में ACC ट्रॉफी खेला और अचानक ACC ट्रॉफी से हमने, हमारी टीम ने इतना परफॉर्मेंस किया कि हमने डिवीजन ICC जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स है, डिवीजन 5 से शुरू होता है, 4-3,
2: 4-3-2।
0: मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ना स्पॉन्सर थे, ना कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना कुछ भी नहीं थे। तो ये मुझे बता दो कि ये जर्नी कैसे हुआ कि हमने काफी मुल्कों ने 15-20 साल में ये 4 डिवीजन जो है क्रॉस किए, और हमने एक ही साल में डिवीजन 4, डिवीजन 5, डिवीजन 5, डिवीजन 4, डिवीजन 3, और डिवीजन 3 से परफॉर्मेंस होकर 2 की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट डिवीजन 1 हम खेला।
2: जी बिल्कुल।
0: और डिवीजन 1 में हमने वनडे स्टेटस और वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग 2011 खेला। ये
2: क्या बात है,
0: ये अजीब सी बात है कि पैसे भी नहीं थे, स्पॉन्सर भी नहीं थे, खुई था, कुछ लोग थे और खुई था जो खर्च करता था और एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। मैं अगर हर एक दिन का स्टोरी आपको बता दूं तो आप रोना पड़ोगे।
2: मैं तो इनफैक्ट यही चाहता हूं कि आज का पूरा शो हम साथ में बैठ के ऐसे ही बात करते रहें। आज का शो क्या, मैं तो चाहता हूं कि शो खत्म होने के बाद भी मैं आपके साथ में चाय पे बैठूं और हम अफगानिस्तान क्रिकेट की बात करें, क्योंकि मेरा अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ 2017 से। 2017 में जब अफगानिस्तान का आयरलैंड के साथ और अफगानिस्तान जिम्बाब्वे, ये दो सीरीज हुई थी यूएई में, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में दो सीरीज हुई थी, और वो दोनों सीरीज का कमेंट्री करने का जो है मुझे अवसर मिला, मौका मिला मुझे। तो मैं कमेंट्री कर रहा था, टीवी कमेंट्री कर रहा था मैं, और जब मैं कमेंट्री कर रहा था मैंने काफ़ी प्लेयर्स के बारे में रिसर्च किया, पढ़ाई करी, समझा कि क्या है, क्या बैकग्राउंड है। राशिद, मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें राशिद को देखो तो बिल्कुल ऐसा छोटा बच्चा सा दिख रहा है वहां पर। अब 2017 की बात है, 9 साल पहले की बात है। तब जो कहानी थी मुझे वो टाइम पे मुझे लगा कि अफगानिस्तान के चैलेंजेस जो रहे हैं वो शायद ही कोई टीम, शायद ही कोई मुल्क इतना, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद इतना ऊपर आ पाए, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल पाए। और आज जब मैं देखता हूँ कि वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, बड़ी बड़ी टीमों के सामने ऐसे खड़े होके, शेरों की तरह खड़े होके दिखाया कि भाई हम पहुँच जाते हैं सेमीफाइनल में, T20 वर्ल्ड कप के पहुँच गए, कोई छोटी बात नहीं है ये। इसमें हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं आगे। आज की तारीख में, पिछले साल दिसंबर की बात है जब हम और आप मिले थे, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का अनाउंसमेंट जब हुआ था, तो वो सारी चीज़ें, और आज हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां पर हम अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। APL पहले भी हुआ था, फिर एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, और अब फिर से जो है हम एक बड़े लीग के दौर पर आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का माइंडसेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, ये थॉट कहाँ से आया, मुझे ये बताएं।
0: हाँ, अब जो पहले आपने सवाल किया, मैंने अभी तक वो जहन में रखा कि वो ऐसा ना हो जाए कि लोग ये सोचे कि सारा कुछ सिर्फ ओनली मैंने किया तो गलत है। अब पहले तो सब कुछ अल्लाह करता है
2: जी,
0: उसके बाद इंसान, कोई भी इंसान जरिया है। तो जरिए, जब मैंने जिस तरीके से मैंने स्टोरी बताया तो साथ काफ़ी लोग हैं, और एक का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी लोग हैं, एक का नाम अगर ले
2: तो दूसरे
0: नाराज हो जाएगा। मैं सबसे बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, और सबने, काफ़ी प्लेयरों ने, यानी जितने भी हमारे पुराने प्लेयर है, आज तक जितने भी प्लेयर है, हर प्लेयर ने अपना हिस्सा लिया। जैसे शाहपुर अभी बीमार पड़ा हुआ है,
2: शाहपुर की हालत देख के बड़ा दिल दुखता है।
0: मैं आपको बता दूं, मेरे कैप्टनसी का प्लेयर है
2: जी,
0: और मुझे पता है कि इन प्लेयरों ने, और नबी के शमूल जितने भी उस वक्त प्लेयर है, हर प्लेयर ने कितना तकलीफ किया। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था तो वो लोग भी अपनी खुद से तो कुछ खर्च कर रहा था,
2: जाहिर सी बात है,
0: अपने जेब से ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो उन लोगों का वो खिदमत और वो हेजिटिंग, यानी वो इन लोगों के जो बहादुरी थी, और वो दिखा दिया, और अफगानिस्तान के लिए वो बाइस बना मेरे लीडरशिप में। तो सबकी खिदमत जो है काबिल कदर है, और आप फुल मेंबरशिप की बात आप जो आपने किया, जो एसोसिएट मेंबर, फिर बाद में तो एसोसिएट मेंबरशिप जो है वो टीम के परफॉर्मेंस पे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस वक्त जो भी था, क्योंकि इधर कुछ दर्द की बात है
2: जी,
0: जब हमने वनडे स्टेटस लिया
2: जी,
0: और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए 2011 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड के लिए क्वालिफाई भी किया, तो इससे पहले जब मैं अपने मुल्क पहुंचो कि मेरा गर्दन में
2: हार लगाएंगे,
0: फ्लावर डाले, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने मुझे बिल्कुल क्रिकेट से हटाया, और किसी अपने मिनिस्टर वगैरह को लाया, और क्रिकेट में, ये तो दुख की बात है
2: जी।
0: फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी आया उन्होंने भी काम किया
2: बराबर.
0: उनसु मेरे हक में जो भी किया नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने जो भी अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ किया मैं उसे थैंकफुल कर रहा हूँ. लेकिन 2013 में जो मैं काफ़ी आदमी थे, लेकिन एक आदमी जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे फुल मेंबरशिप में, उसने काफ़ी काम किया, वो शफीक स्थानिक जो से होते, वो 14-15 साल की उम्र में एक लड़का 1999 में जो अफगानिस्तान के प्रोविंशियल टूर्नामेंट हो रहा था, ये 14-15 साल का था, जो इन्होंने फास्ट सेंचुरी बनाया.
2: अच्छा,
0: तो ये बहुत अच्छा बैट्समैन था.
2: हाँ.
0: तो उस वक्त ये मेरे भाई की तरह, छोटा भाई की तरह, वो क्रिकेट, वो नहीं चाहते थे कि क्रिकेट में काम करे. बस अचानक जब मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से दुख की बात थी, मैंने जो कहा कि हमको हटाया और क्या यार हमें क्या बोलते हैं, यानी जो फ्लावर्स है
2: हार चढ़ाना चाहिए
0: वो चढ़ाना चाहिए थे कि यार 17-18 साल हमने अपने ज़िंदगी बर्बाद किया. तो फिर ये हुआ, लेकिन फिर भी क्रिकेट आगे बढ़ा. तो प्लेयर्स की खिदमत, प्लेयर्स की एक्टिविटी और प्लेयर्सों की परफॉर्मेंस
2: जी,
0: वो इसके बायस बनी कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़े. कुछ लोग ऐसे थे जैसे मैंने नाम लिया, शफीक स्थानिक वगैरह वगैरह, जो भी है कुछ ना कोई भी नाराज ना हो जाए, तो इन्होंने जो भी कुछ किया, तो उसका वजह यह है सबसे पहले प्लेयर के परफॉर्मेंस और अच्छे प्लेयर
2: जी बिल्कुल,
0: जैसे राशिद नबी वगैरह आ गया तो फुल मेंबरशिप भी मिल गया.
2: क्या बात
0: तो
2: है.
0: फिर भी बताओ, हर एक दिन की अफगानिस्तान की क्रिकेट स्टोरी बहुत अलग है, लेकिन मेरे पास जो स्टोरीज है वो आपके यार आपको रुला देगा.
2: क्या बात है. तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लोगों को न्यूज सुनाते हैं, न्यूज सुन के फिर हम वापस आते हैं और फिर हम आगे की कहानी सुनते हैं कि हमने अफगानिस्तान की हिस्ट्री समझ ली है, अब फ्यूचर देखते हैं.
0: इंशाल्लाह.
2: ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक. राइट हियर ऑन TSB अलोंगसाइड अस इज द फाउंडिंग मेंबर, द फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट, द फादर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट, मिस्टर अल्लाह दाद नूरी. राइट हियर ऑन TSB आई एम नील ओझा.
1: TSB Talk Sport and Business. Talk 100.3. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business. This is Talk 100.3. This is Fan Network News from the BBC.
3: BBC News with Jane Steele. The Israeli Defense Minister has said his forces will continue ground operations in Lebanon despite the announcement in Washington of a renewed ceasefire. Israel Katz said the IDF had freedom of action backed by the United States. Conversely, the deal requires Hezbollah, which wasn't involved in the talks, to halt its attacks against Israel and withdraw from southern Lebanon. Correspondents say it's unlikely to alter much. In a largely symbolic move, the US House of Representatives has passed a resolution calling for President Trump to win approval from Congress to continue his war against Iran. Four Republicans sided with Democrats in a vote being closely watched for divisions within the president's own party. Fiji has rejected plans by an Australian billionaire to send hundreds of thousands of tons of rubbish to the island nation to be burned for energy production. The government said Fiji would have become the Pacific's ashtray. The European Union has begun preparations for accession talks for Ukraine and Moldova. It follows Hungary dropping its previous objections. SpaceX has filed for what's expected to be the largest IPO in Wall Street history. Analysts say this could see Elon Musk become the world's first trillionaire. Fighting is reported to have continued in the Somali capital Mogadishu. Clashes between rival political factions broke out on Wednesday over delayed elections. A Nepali climber who went missing 6 days ago on Mount Everest has been found alive, crawling back towards base camp. Dawa Sherpa got lost on the upper reaches of the world's highest mountain. He was presumed dead until he was spotted by a rubbish management team early on Thursday. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Talk music. Brought to you.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: This is Talk 100.3.
2: हेलो एंड वेलकम टू टीएसबी टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस. आई एम नील ओझा ऑन टॉक 100.3. हमारी बातें हो रही हैं अलादाद नूरी साहब से. ये फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट है, द फादर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट. किस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान में क्रिकेट लाया, एक ऐसा वाक्य बना था पेशावर में जहाँ पर वो अंडर 19 ट्रायल्स के लिए गए थे और वहाँ पर उन्हें कहा गया था कि नहीं साहब, आप तो अफगानी हैं तो आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलें. सही है, पर दैट इज़ दैट मोमेंट विच इंस्पायर्ड हिम टू गो बैक टू अफगानिस्तान एंड डिसाइड दैट माय कंट्री विल हैव क्रिकेट इन आर बैकयार्ड्स. एंड दैट नेशन देन नॉट जस्ट प्लेड क्रिकेट बट वेंट ऑन टू क्रिएट रिकॉर्ड्स, क्रिएट हिस्ट्री इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. एंड वी आर द एनविल ऑफ a start of another massive journey in Afghanistan cricket, Afghanistan Premier League. Ek naya chapter Afghanistan cricket ki history books mein judega. Pichle saal December mein jo hai iska launch hua tha, announcement hua tha, bade paimane par bade bade stars aaye the, Afghanistan ke kafi sare stars bhi aaye the wahan par, aur नूरी साहब भी हमारे साथ वहीं पर थे, मुलाकात हमारी वहाँ पर हुई है. और आज इतने महीनों बाद जब वापस मिले हैं तो अफगानिस्तान की पूरी कहानी तो हम सुन ही रहे हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट की पूरी कहानी, पर यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में आगे क्या हो रहा है. लॉन्च तो हो गया, उसके बाद की कहानी बताइए नूरी साहब कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, ये थॉट कहाँ से आया, डायरेक्शन कहाँ से आई और अब हम कहाँ पर हैं.
3: अफगानिस्तान APL तो उससे पहले शपगीज़ लीग हुआ जी, काबुल में हो गया था. तो उसमें जो असल में APL का स्टार्ट होना दुबई में, उसका रीज़न ये था कि फॉरेन जो प्लेयर्स थे वो अफगानिस्तान में आना नहीं चाहते थे. तो इसलिए हमने APL का जो 2019 में
2: जी
3: शारजा में हुआ, तो APL का प्रोग्राम उस वक्त के मैं फिर कहूँ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था उसी वक्त मैं भी वापस अफगानिस्तान क्रिकेट में इन्वॉल्व हो गया था एज अ द आई वाज द हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड.
2: ओके,
3: तो उस वक्त तो जो भी चेयरमैन वगैरह सीओ शफीक स्तानिकज़ई और जैसे अजीज़ुल्ला फजली और मशाल लुत्फुल्ला मशाल, ये लोग थे. तो उन्होंने APL का जो स्ट्रक्चर बनाया और APL किया
2: जी बिल्कुल,
3: और हो गया. उसमें उसके बाद इस सिलसिले में इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है भी नहीं, सच बताऊं, बस गड़बड़ हो गया इंटरनेशनल जो ICC है उनकी तरफ से कि ये है वो है, जो भी हो होता था. लेकिन क्रिकेट बोर्ड उसके साथ जो उनके जो सवाल थे वो जवाब दे रहा था. लेकिन अफगानिस्तान में ये हुआ कि गवर्नमेंट, फुल गवर्नमेंट चेंज हो गया, दूसरा गवर्नमेंट आ गया. तो इसकी वजह से 4 साल तकरीबन लगातार APL जो है वो नहीं हुआ
2: जी.
3: तो अभी जो APL हो रहा है इंशाल्लाह और 100% हो रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एज अ गवर्निंग बॉडी, एज अ लीडर, और मैं भी जो भी मैं हूँ अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, तो ज़्यादा मैं फोर्स डालता हूँ कि नहीं APL को होना चाहिए. तो उस वक्त भी तो आपने जो कहा दिसंबर में
2: जी बिल्कुल,
3: आप तशरीफ लाए थे और आपने प्रोग्राम पूरा हैंडल कर रहा था, तो आप भी थे. तो अभी इंशाल्लाह दुबई में आने वाला मीटिंग में इंशाल्लाह टीम्स के भेजने के जो भी तरीका है
2: जी बिल्कुल, बिड्स चल रहे हैं जी,
3: वो बिड्स वगैरह हो रहा है. तो APL होगा
2: माशाल्लाह
3: और सक्सेसफुल होगा और आप लोग तो जरूर होगे इंशाल्लाह.
2: क्या बात है, थैंक यू सो मच. ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि यू नो अफगानिस्तान के लिए एक लीग का वापस आना. APL हुआ था, आपने कहा था 19 में शारजा स्टेडियम में हुआ था, हम थे वहाँ पर भी देखने आए थे हम. उसके बाद में एक जब ब्रेक लगती है कोई चीज़ में तो हमेशा एक मन में डाउट आता है कि क्या ये वापस आएगी. अब बंद क्यों हुई, क्या हुआ, ये इसके पीछे रीजंस कोई जानना चाहता है, कोई नहीं जानना चाहता है, पर ये जरूर जानना चाहते हैं क्या ये वापस आएगी। और जिस तरह का लॉन्च हुआ था दिसंबर में, जिस तरह का प्रोग्राम हुआ था, इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम हुआ था, उसे देख के यकीनन लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। और सारे प्लेयर्स भी आए थे वहाँ पर, ये जितने भी अपने आज के जो प्लेयर्स हैं जिनको हम देखते हैं टीवी पर, जिनको हम हर लीग में देखें, दुनिया भर में जो भी लीग्स हो रही हैं वहाँ पर जाके खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है और आप भी यकीन मानेंगे इस बात पर कि जो भी लीग्स होती हैं उनमें सबसे पहले अफगानिस्तान के स्पिनर्स को चुना जाता है। अफगानिस्तान और स्पिन बोलिंग का क्या रابطہ है, क्या कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ बताइए।
3: एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, राशिद के आने से अफगानिस्तान में मैं कहूँ मुझे राशिद ऐसे लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा, और हर लिहाज से उन्होंने अफगानिस्तान के लिए काफ़ी कुछ किया, परफॉर्मेंस के लिहाज से एज अ बॉलर, एज अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर मैं ना कहूँ, स्पोर्ट्समैन
2: जी बिल्कुल।
3: तो उनके आने से अफगानिस्तान में स्पिन के जो स्पिन बॉलिंग की जो
2: दीवानगी वो अलग लेवल पे चल
3: ज्यादा हो गया। मैं मेरा बेटा है एक इंग्लैंड में खेल रहे एक क्लब की तरफ से इंग्लैंड में, वो उसका हाइट भी मेरे बराबर,
2: okay.
3: मैं बोलता हूँ कि बेटा आप फास्ट बॉलिंग क्यों नहीं करते, फिटनेस भी बहुत अच्छा है। नहीं वो मुझे बोलता है कि नहीं, मुझे बोलता है लाला, अबू को लाला बोलते हैं, लाला नहीं बस मैं स्पिन करता हूँ। और काफी अजीब सी डिलीवरी करते हैं यार वो, इंग्लैंड के जो पिचेस है जैसे सीमेंट की तरह बहुत सीधा पिचेस है, तो उन्होंने अभी 9 मैचों में 27-28 आउट किया। वो मैंने कहा कि उसकी कोचेस से वगैरह से अभी मैं जा रहा हूँ उनसे। तो एक बेटा और भी है
2: ओके,
3: उसके सेम टू सेम शक्ल भी राशिद से मिलता है, तो उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम तो स्ट्रांग हो, वो फ्री फाइटर स्पोर्ट्समैन भी है। तो वो कहने कि नहीं मैं कि बैटिंग करती हूँ ना आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो लग, नहीं कि मैं तो स्पिन करता हूँ और बहुत अच्छा गुगली डालता हूँ। मैंने कहा यार राशिद आपने तो सारे मुल्क को गुगली बना दिया तो हर कोई तो ये सच है
2: जी।
3: कि स्पिन के जो राशिद के आने से, बाद में मुजीब के आने से, वो जिस तरीके से वो फिंगर स्पिन बॉलर है
2: जी।
3: तो अफगानिस्तान में तो लोगों को इतना क्रिकेट के बारे में, वो मैं ज्यादा क्रिकेट के ऊपर बहस नहीं करता, जो किया है अपने मुल्क के लिए किया
2: जी
3: है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन अफगानिस्तान में ये कहो कम ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप भी नहीं जीता और एक बार सेमीफाइनल पहुंच गया
2: जी।
3: तो वो भी हमारे लिए वर्ल्ड कप था, लेकिन हम हमारे मुल्क में ऐसे नहीं कि 2-3 वर्ल्ड कप जीते और हमने तकरीबन कोई 50 साल से बाकी मुल्कों का जो हिस्ट्री है और बड़े बड़े प्लेयर, हमने सबसे बड़ा प्लेयर अफगानिस्तान में जो सबसे पहला कैप्टन है वो मैं हूँ।
2: राइट बिल्कुल।
3: और मैं भी लोग जब देखते हैं वो बोलते हैं कि यार ये तो हो सकता है, ये कैसे कैसे हो सकते हैं अफगानिस्तान का क्रिकेट फाउंडर, ये तो 30-35 साल का। उस दिन मैंने कहा कि यार आप नजर ना लग जाए, मैं 30-32 का नहीं हूँ, मेरा बड़ा बेटा 32 साल का है।
2: माशाल्लाह क्या बात है,
3: अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं 50+ हूँ, लेकिन मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ और रेगुलरली अफगानिस्तान नेशनल टीम के जो अभी भी यंग प्लेयर है 20-25 साल के, मैं उसके साथ शाना बशाना उसके साथ खेलता हूँ। तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि पैसों से काफी चीजों से स्पोर्ट्स में अपने जहन में ज्यादा आगे रखता हूँ कि ये फिटनेस के लिहाज से। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा फैमिली है
2: माशाल्लाह।
3: मैं आपको ये ऐसे प्रोग्राम में तो बताना सही नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा हंसना आएगा कि मेरा तकरीबन 11 मेंबर्स ऑफ फैमिली है।
2: ओह ब्यूटीफुल।
3: और इसमें जो है तकरीबन 13 नवासे है मेरे।
2: माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
3: तो ये कुछ क्रिकेट के अलावा जो एंटरटेनमेंट के लिए भी ये बात ही होने चाहिए।
2: नहीं नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि कैसा होता है ना कि एक इंसान कंप्लीट तब होता है ना, क्योंकि हर तरीके से वो कंप्लीट होना चाहिए। आपने बिजनेस भी किया है, ठीक है,
3: आप
2: अभी भी कर रहे हैं, आपने क्रिकेट भी खेली है, आप कप्तान रहे हैं, लीडरशिप रोल्स आपने संभाले हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखी है आपने, जो है अफगानिस्तान क्रिकेट को इस लेवल पे लेके आए हैं, तो आपका यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप रिलेशनशिप्स आपके अच्छे रहे हैं, एंड जाहिर सी बात है एक फैमिली मैन इन सब सारी चीजों के साथ साथ एक अच्छा कंप्लीट फैमिली मैन होना भी जरूरी है।
3: वो एक चीज मैं आपको भी एंटरटेनमेंट के लिए बता दूं कि मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, मेरा अबू जो है और मेरा मामू जो है
2: जी,
3: वो आपस में बातें कर करके, और मैं 16 ईयर्स का था
2: ओके,
3: तो वो कंप्रोमाइज करके और मामू के जो बेटे थे
2: जी
3: उससे बात हुए थे, वो मुझे पता भी नहीं था। बस शाम को मुझे किसी ने पेशावर से, हम स्वात में रहते थे, एक आदमी को भेजा कि इसको बोलो कि बस 2 दिन में तैयारी हो जाए और हमने आपके लिए शादी का बंदोबस्त किया। मैंने कहा
2: क्या बात कर रहे हो
3: भाई, भाई मैं 9th क्लास में, मेरे अपनी माँ को बोला मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, वो 16 ईयर्स मेरा एज है तकरीबन 16 या 2-3-4 महीने, मैंने उसको उसकी फोटो मैंने रखी है, तो मेरे बात कोई मानता नहीं रहता, तो इधर उधर से वो उस वक्त जो था बहुत ज़्यादा लोगों में ये था कि फायरिंग हवाई होती थी, तो ये शुरू हुआ और बस उसी महीने में मेरे शादी भी करवाया।
2: क्या बात है।
3: तो 36 ईयर मेरा उम्र तक जब मैं ग्रैंडफादर बन गया।
2: क्या बात कर रहे हो।
3: ये भी रियल स्टोरी है मेरी लाइफ की, ये भी अजीब है,
2: ये कहानियां तो, देखो हमें सुनने मिल रही है फर्स्ट हैंड।
3: मैं एक प्रोग्राम पे गया था, तो मेरा जो सन इन लॉ है उसने किसी को मेरा इंट्रोडक्शन करवाया था कि उसके बोल के मैं फादर इन लॉ है। मैंने उसे पकड़ा, मैंने कहा कि इधर आ जाओ, इधर आ
2: जाओ,
3: कैसे को नहीं बताने, तुम्हें देखो मरीदों को, तुम मुझसे बड़े रह गए, उसको बोलो फादर इन लॉ। मैंने कहा चुप हो जाओ, किसी को नहीं बताने आप किसी। तो यही जिंदगी ऐसी गुजारी है, बस मैं टेंशन लेता नहीं।
2: क्या
3: वो
2: बात है?
3: जो एक मूवी है संजय दत्त का, किसके हम देता है लेता नहीं,
2: टेंशन देने तो का लेने का नहीं। सिनेमा का शौक है आपको, आपने संजय दत्त के बारे में बात करी है।
3: हाँ, कभी कभी जब हमारा पहला टूर अंडर 17 का हुआ था, तो हमारे ट्रेनिंग कैंप हुआ था पंजाब मोहाली में, तो उस वक्त मुन्ना भाई MBBS नया वो इच्छा था, तो जिस आदमी ने हमारे लिए ये प्रोग्राम उधर बनाया था वर्ल्ड क्रिकेट एकेडमी की तरफ से मोहाली में बनाया था, तो सचिन बजाज उसका नाम था
2: जी,
3: तो उसने सारी टीम, और उस वक्त नबी भी था अंडर 17 में, काफ़ी प्लेयर थे, असगर भी था
2: जी,
3: हमीद हसन भी था, तो हम पूरा टीम उन्होंने लेके गया, हमने मोना भाई MBBS देखा।
2: क्या बात है, क्या बात है।
3: तो इसलिए तो कभी कभी, वैसे मैं 10-11 साल का था उस वक्त भी, मेरे अबू ने मेरे ख्याल 7th क्लास तक मेरा ऐसे 1st क्लास से 12th क्लास मेरा फर्स्ट पोजीशन था क्लास
2: okay.
3: में, तो मैं इस बार पूरा जो हमारा स्कूल था उसके पूरे स्कूल के मैं टॉपर था
2: ओके okay.
3: तो मैंने अबू के पास गया, तो अबू की उस वक्त भी कारोबार अच्छा कारोबार था, तो सिर्फ उसने कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा कि पूरा स्कूल का टॉपर हूँ, तो बैठ के उससे पूछा कि हम अबू को दादा बोलते थे, मैंने कहा दादा अब कुछ हटाने या 1 रुपया दे दो,
2: अच्छा
3: कि बच्चे तंग कर रहे हैं जब मैं टॉपर हूँ, तो उसने ऐसे देखा, मैंने कहा उठो उठो, वो लोग तो इतना वो सादा लोग थे
2: जी,
3: बहुत ज़्यादा सिंपल, तो उसने ये कहा मैं इतना जिद्दी आदमी हूं कि मैं 18-19 साल का हो गया, तो आप मान लो कि मैं पूरा सराफा एसोसिएशन पेशावर और तकरीबन काबुल तक मेंबर रहा, और एक दिन अबू आ गया जो जिद मैंने किया, और कहां से स्टार्ट किया पता है, स्कूल से पहले मैं स्वात के बागों में सुबह वक्त जाता था, उधर से कुछ 2-3-4 क्रेट कार्टन
2: जी
3: ये फ्रेश फ्रूट
2: ओके
3: लेके आता थे स्कूल से जाने से पहले, मैं वो बेचते थे तो उसमें कुछ कमाते थे
2: ओके
3: तो 18-19 साल का मैं इतना हुआ कि मेरे पास इतना बजट था कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास नहीं होते
2: माशाल्लाह।
3: तो अब वो आ गया, تو ہمارے پشاور میں کپڑے کا کاروبار تھا, تو اس نے کہا کہ میں دبئی سے کاروبار شروع کرتا ہوں. تو میں نے کہا خدا حاضر ناظر ہے کہ ابھی جو میں نے اس وقت ابو کو کہا, میں نے کہا ابو اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ 1 million تقریباً چاہیے اور مجھے دبئی سے کپڑا لانا ہے. میں نے اس وقت ابو کو بولا, ایسے ہنس کے اس کو بولا کہ ابو آپ کو یاد ہے جو میں نے ایک دن آپ سے اٹانے
2: جی
3: مانگے تھے آپ نے نہیں دیا؟ اس نے کہا بات نہیں کرنا, چابی دے دو. اور سیب سے زبردستی سے 10 lakh نکالے اور دبئی سے اپنا کاروبار اسٹارٹ کیا, جو ابھی تک ہم دبئی میں کاروبار کرتے ہیں. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے
2: جی بالکل,
3: باقی کرکٹ کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے
2: ظاہر سی بات ہے
3: میں نے کچھ کہا
2: نہیں بھائی. یہی تو ہے نا کہ کرکٹ اور اپنی زندگی یہ دونوں ساتھ میں چلتی ہیں. کوئی اکیلے صرف اپنی زندگی بتا رہا ہے اور کرکٹ اس کے ساتھ میں نہیں ہے. تو مجھے میرا جو کرکٹ کا پیار ہے, میں تھوڑا سا کرکٹ کھیلا ہوں, تھوڑی سی میں نے کرکٹ کوچنگ کری ہے, کامنٹری کرتا ہوں کرکٹ کی, تو یہ سب سے مل کے ایسا لگتا ہے نا کہ کہیں پر جس کو کرکٹ سے پیار ہے یا کرکٹ جس کی زندگی میں رہی ہے, مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ خوش نصیب ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟
3: ہے بالکل, جنرلی جو بھی اسپورٹس ہے
2: بیسکلی, ہاں صرف
3: اگر آپ کے بلڈ میں اسپورٹس کی جی وہ جوش و خروش جو ہوتا ہے اگر وہ ہے, تو میں اتنا کہوں کہ آپ کسی چیز سے بھی اتنا زندگی میں لذت نہیں پاؤ گے جیسے اسپورٹس سے آپ
2: کیا بات
3: کرو گے. اور جیسے ہمارے ملک کا جو حالات اور 45 or 40 years سے جو چل رہا ہے, اور اسی حالت میں جو 30 years پہلے یا 31 years پہلے آس پاس 32 years پہلے جو اتنی عمر میں اس وقت جو حالات تھے بہت زیادہ سخت حالات تھے. اٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ
2: آئی ایم شیور
3: ٹو ڈیولپ اینی تھنگ ان افغانستان.
2: سو ٹرو.
3: سو ناؤ سم ٹائم وین آئی ایم تھنکنگ دیٹ ٹائم آئی ایم فوکسنگ ان مائی پاس دیٹ وٹ وی ہیو ڈیڈ. So I'm awarding myself sometime.
2: No, you should. I'm telling you absolutely what you have done, aapne jo kara hai Afghanistan ke liye, Afghanistan cricket ke liye, Afghanistan ke future ke liye, wo hum jitni bhi uski tareef kare utni kam hai. Kyunki اسپورٹ جو ہے وہ نہ ہی ایک ذریعہ ہے پیسے کمانے کا, پر ایک لائف سٹائل ہے, ایک طریقہ ہے زندگی بتانے کا. اینڈ اگر اسپورٹ اگر لائف میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کی لائف 99.9% جو ہے وہ سکون سے چلتی ہے, چاہے پھر آپ اسپورٹس کے سپر اسٹار بنے یا نہ بنے, بٹ آپ جو ہے ایک ڈیڈیکیشن سے, ایک فوکس سے, ایک سینس پڑ جاتا ہے لائف میں کہ بس میں نے یہ اچیو کرنا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. وہ ڈیڈیکیشن اسپورٹ ہی لا سکتا ہے.
3: میرے زندگی میں سب سے پہلے میرا جو بھی کچھ ہے, جو بھی کچھ کر رہا ہوں زندگی میں, جو اللہ نے وہی کر رہا ہوں
2: ماشاء اللہ.
3: اور ابھی ایک بیٹے نے فون کیا کہ رات کو میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے, دروازہ بھی بند کیا اور دعا کر رہے, تو بھائی بول رہے کہ اندر مت جاؤ, ابو دعا کر رہے. تو میری بیٹیا جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے, وہ اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر آ گیا. اس نے کہا کہ آپ دعا, آپ نے, میں نے کہا, میں نے اس کو بولا کہ آپ نے نیند صحیح دیکھا, ایسی لڑ پڑ رہا ہوں اللہ کے ساتھ.
2: کیا بات ہے,
3: میں اللہ جو بھی زندگی کی جو بھی کچھ ہے اللہ سے. اس سے علاوہ بزنس کرتا ہوں لیکن 99% میرے زندگی میں اسپورٹس ہے.
2: کیا بات,
3: ابھی میں آپ کو بتا دوں, ابھی بھی ایک ڈلیوری مجھے آ گیا انگلینڈ سے.
2: اوکے.
3: جیسے میں والی بال کھیل لو, اور کسی نے مجھے کہا کہ یہ بہت مہنگا شوز ہے لیکن اس عمر میں جو آپ والی بال کھیلتے ہو, اگر یہ شوز لے لے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو میں نے آڈر لیا اور اس شوز کی وجہ سے میں 4 days ادھر ٹھہرا دبئی میں, کہ اس کے ریزن وجہ یہ ہوا کہ آپ سے بھی ملاقات.
2: کیا بات ہے, دیکھیے یہ ہوتا ہے, یہ اوپر والے کا کر,
3: یہ اوپر والے کا. میں جب اندر آ گیا میں نے کہا کہ یار یہ تو عجیب ہے, میں اس شوز کے لیے ٹھہرا اور شوز کا راستے میں بھی دوست کو بتایا. تو
2: کیا بات,
3: سسٹم زندگی اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کی زندگی میں اگر اسپورٹس ہے تو وہ اس دنیا میں جیتے گا, اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو اس دنیا میں بھی جیتے گا.
2: ماشاءاللہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ہمارے ساتھ میں اتنا ٹائم اسپینڈ کیا, ہمیں اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بھی جب بھی آپ دبئی آئیں گے تو ملاقات کریں گے اور
3: ضرور
2: ڈھیر ساری چیزیں کریں گے افغانستان کرکٹ.
3: جو بھی کچھ میں نے بتایا
2: جی,
3: اور اس سلسلے میں جو بھی اس وقت کے جو پکچرز ہے جو ڈاکومنٹس ہیں
2: جی
3: میں آپ کو بھیجوں گا.
2: مجھے بہت خوشی ہوگی,
3: لیں گے
2: مجھے بہت خوشی ہوگی,
3: آپ کو پتہ چلے گا کہ سچ میں کچھ تو کیا ہے کسی نے جو افغانستان کا کرکٹ.
2: اگر اگر نہیں کیا ہوتا تو شاید آج افغانستان کرکٹ یہاں پر نہیں ہوتی جہاں پر ہے.
3: Maybe.
2: This is beautiful. And we wish you all the luck for everything that is coming up. Afghanistan Premier League, Afghanistan ki series ab India mein aane wali hai. Un sari cheezon ke liye hum aapko all the best kehte hain, wishes dete hain, dua karte hain ki aap you know success paayein aur achhi health paayein inshallah in the future.
3: Main zyadatar waqt Dubai mein hu. Thoda poda hamara consultancy company hai to zyadatar waqt main idhar hi hu
2: aur
3: jab bhi zarurat pade
2: ji
3: Afghanistan ke cricket ke bare mein jo bhi میں حاضر ہوں.
2: Thank you.
3: خدمت میں انشاءاللہ.
2: Thank you so much.
3: Thank you so much.
2: Thank you so much. That's Mr. Alhadad Noori joining us in a conversation exclusively on Talk 100.3. What a splendid human being at heart, because he's the one جن کی وجہ سے آج افغانستان کرکٹ جو ہے وہ ہے. میں ہوں نیل اوجا, we'll take a break and be right back on TSB.
1: This is Talk 100.3. This is Talk 100.3.
4: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
5: BBC News with Jane Steele. The Israeli Defense Minister has said his forces will continue ground operations in Lebanon despite the announcement in Washington of a renewed ceasefire. Israel Katz said the IDF had freedom of action backed by the United States. Conversely, the deal requires Hezbollah, which wasn't involved in the talks, to halt its attacks against Israel and withdraw from southern Lebanon. Correspondents say it's unlikely to alter much. In a largely symbolic move, the US House of Representatives has passed a resolution calling for President Trump to win approval from Congress to continue his war against Iran. Four Republicans sided with Democrats in a vote being closely watched for divisions within the president's own party. Fiji has rejected plans by an Australian billionaire to send hundreds of thousands of tons of rubbish to the island nation to be burned for energy production. The government said Fiji would have become the Pacific's ashtray. The European Union has begun preparations for accession talks for Ukraine and Moldova. It follows Hungary dropping its previous objections. SpaceX has filed for what's expected to be the largest IPO in Wall Street history. Analysts say this could see Elon Musk become the world's first trillionaire. Fighting is reported to have continued in the Somali capital Mogadishu. Clashes between rival political factions broke out on Wednesday over delayed elections. A Nepali climber who went missing 6 days ago on Mount Everest has been found alive, crawling back towards base camp. Dawa Sherpa got lost on the upper reaches of the world's highest mountain. He was presumed dead until he was spotted by a rubbish management team early on Thursday. BBC News.
4: Fan Network News from the BBC. Grey coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Talk 100.3. TSB. Talk Sport and Business. Talk 100.3.
2: Hello and welcome to TASB, Talk Sport and Business. I'm Neil Oja. We've been talking about AI. We've been talking about integration of AI into our daily lives. But AI کا انٹیگریشن ڈیلی لائف سے ہٹ کر ایٹ این ایلیٹ لیول پہنچ گیا ہے فٹ بال میں. اب آپ بولو یہاں تو اس میں کیا ہے, کرکٹ میں بھی تو ہے, جس طرح کا پورا ڈیٹا آتا ہے, انالیٹکس آتے ہیں, یہ ساری چیزیں اے آئی تو ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, یہ سب اے آئی کی مدد سے بنے ہیں, پر فٹ بال از ٹیکنگ اٹ ٹو اندر لیول. فیفا ورلڈ کپ جسٹ اراؤنڈ دا کارنر اینڈ دا نیوز از دیٹ دے آر گوئنگ ٹو یوز اے آئی ٹریکرز, اے آئی انیبل ٹریکرز ان سائڈ دا بال. یعنی بال کے اندر وہ چپ لگی ہوئے گی اور بال پھر جیسے جائے گا موو کرے گا, سپیڈ بڑھے گی, کم ہوگا, یہ وہ, اس کے ساتھ آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا, انالیسز آئے گا, انفارمیشن آئے گا, وہ بینڈ اٹ لائک بیکم کیسے ہوتا ہے وہ پتا چلے گا. اب یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, میں نے پرنو کو پکڑ لیا یہاں پہ, اے آئی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ہماری. تو پرنو, واٹ آر یور تھاٹس آف دس انوینشن ویئر ان you're going to integrate AI into literally an object that you're going to play with?
6: This is more data and more stats for people to, you know, figure out and play with ki kis intensity mein kisi striker ne, for example, agar shot li hogi, and you just have a calculation of what was the force, what was the angle at which the player got the ball, got the kick on it, or what the curve, for example, that was on the ball. You get to sort of track how many bounces, or if you could have taken it on the full volley, half volley. All these sort of datas gets fed into a manager, for example. This will be made available to the managers, to the analysts. Again, data upon data for athletes to sort of think around, to, you know, then refix the way they train. I think sport is moving extremely data centric and number focused. You're not creating the Messis, the Ronaldinhos, the Ronaldo Nazarios of the time, the Kakas. You know, you're just not creating any of them in almost 80-90% of the footballing world. And that's unfortunately because of the data, and a lot of coaches these days wants to play with systems. They want to play with a high back line. They want to play with a controlled midfield, but they want to have a certain systemized way. You're not allowing individual brilliance to flow through. Now, is AI at fault over here? I wouldn't entirely say so. It's about our interpretation of data. It's about what we want to do with it. You can have a lot of shots. You can have a lot of data about how the ball has bounced, whether it has been contact, no contact with the ball. For example, something with this, what the sensor can tell you is another help for the referee. Agar aapko yaad hai with what Diego Maradona did, one of the most famous instances in a World Cup, he handed, like, he basically pushed a ball into the back of the net against England. It was Argentina versus England in one of the finals, where the contact came off his hand, went into the net. The referee at the time, his line of sight was such that he thought it was the header from Maradona that went into the net. The goal was given. Argentina won the World Cup. England were absolutely fuming about that decision. Now, ideas like that will, or decisions like that will be eliminated with the help of AI, and certainly with the ball itself, because your sensory levels of the impact of your hand on the ball compared to your feet or your head on the ball are two different spikes, are two different levels. Think of it like ultra edge. It's pretty much like that. Jo spike aapke pocket se jaati hai from your pant when the ball brushes through the pockets on your pant, compared to an inside edge or a thick outside edge, right? In cricket, the ultra edge has different type of spike. That's basically what an AI over here can also assist you with. So more from a refereeing angle, more from a decision point of view, I think AI is fantastic. But the same the analyst shouldn't be enforcing it onto the players. That's what I think.
2: I was, in fact, reading a report about AI and the usage of AI and everything. And then there was one video that came about AI, usage of AI in sport and all of that. And then there was one video that I saw where there was a coach, an Indian coach, not at an elite level, at probably a state level. And he said that, I've been using, various things, from garments to the whoops and the chest bands and the arm bands and the wrist bands of the world. Maine sare tracker istemal kar liye hain, but I don't believe in any of these health trackers. He went completely anti. He said, I don't believe in any of these trackers, fitness monitors or whatever, because how can you rely on this data, which you don't even know how it is taking, and tells you one morning when you wake up, kecha aap green mein ho to aaj aap full training karoge, aaj aap red mein uthe ho to aaj aap training nahi karoge, aaj aap agar orange mein uthe ho to fir aap thodi si training karoge, and you will try and give more time to recovery. Aisa thodi hota hai, aisa thodi athlete bante hain.
6: Right.
2: I personally felt that he came in from a slightly classical or an old school mindset,
6: right?
2: Ke jahan pe, you are a little more adamant about an athlete training every day. You don't really think of modern day concepts of, say, load management or recovery in that zone, where you say ke nahi, recovery bhi important and alag alag tarike se recovery ki jati hai, versus thinking training to roz honi chahiye, workout to roz karna hai, body banani hai, tez daudna hai, ground ke 20 chakkar lagane hai. I have been trained in that fashion,
6: right?
2: As an athlete or a, not a, as a, as an semi-pro or a non-pro athlete, amateur athlete, I was trained in that fashion.
6: Okay.
2: Where you go out and you train every day, you go and do runs off the ground, you are punished, and the punishment is lifting your kit bag over your head and you run, make the rounds of the ground till you actually fall down and say you cannot do anything.
6: Yeah.
2: You know, testing your absolute ability.
6: Hmm.
2: We were trained in that fashion, but today as a coach, do I tend to use data or look at data towards improvement of my athletes? 100% yes. I need to bridge that gap. ठीक है ना? And वहीं पर उनका जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा यार आप अभी भी शायद उस ओल्ड स्कूल माइंडसेट में हो, which is ठीक है, fair. Every coach is different. Every coach has a different mindset, a different appeal. But while this data is there to be used, ठीक है? And in my opinion, I've always felt that nothing is 100% right.
6: Absolutely.
2: आपके पास जो data आ रहा है, क्या वो 100% accurate है? Maybe no.
6: No. There's always a margin of error with it.
2: 100%. ठीक है, there's a margin of error over there. Is the old school method 100% right? No. There are some flaws in that as well. So what is the right thing? A combination of the two.
6: Yeah.
2: What works for you? What works for your athlete? If on a Whoop it tells you कि आप green में हो, मतलब कि आपकी recovery full हो चुकी है, मतलब कि आप जाके train कर सकते हो. Test it. Test how well your athlete performs when the recovery is green. Test how your athlete performs without giving the athlete the information. ठीक है ना? Because if the athlete has that information कि मेरा तो आज recovery red तो मैं train शायद नहीं कर पाऊंगा, तो psychologically आपने एक barrier खड़ा कर दिया.
6: Yeah.
2: वहीं पर आप athlete को मत बताओ कि आपका information जो है वो red आया है, recovery red है, आप जाके उनसे train करवाओ. And then you make manual notes and then you find the difference कि जब recovery green थी तो एथलीट कितना कर पाया था, सेम एग्जैक्ट सेम थिंग्स इन द ट्रेनिंग, एंड देन यू हैव अ डबल चेक, यू विल गेट योर आंसर्स. इफ द एथलीट इज स्टिल एबल टू परफॉर्म विद जीरो रिकवरी, लाइक रेड रिकवरी और व्हाटएवर, देन यू नो कि ठीक है, आपको जरूरत नहीं, आपके यहां तो उस एथलीट को जरूरत नहीं है. बट try and do a double check, ek back test karna hamesha zaruri hai to get the right information, because nothing is 100% right, but at the same time to shun everything that you ever believed is also wrong. Aisa nahi ho sakta ki technology completely galat hai aur aapke methods, old school methods completely right hai, kyunki kahin par jab humko coach jo bolte the ki bag leke tab tak daudo jab tak tum daud nahi pate.

0: TSB, the latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
1: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja. Let's have a check on what's happening in the financial markets. The crypto first. Bitcoin has slid down so bad. 62,642. Ethereum at 1,748. XRP on 1.15 and Dogecoin on 0.880. As far as the Asian markets are concerned, Nikkei 225 after a fantastic upward journey yesterday that went up by 2.5%, today down by 1.36%, SSE closing 0.64% down, and HSI down by 1.48%. Sensex up by 0.02%, Nifty 50 also closing in the green, 0.05% up in the day's trade. I'm Neil Oja, keeping an eye on the financial world right here on TSB.
0: Talk 100.3 Traffic.
1: ट्रैफिक का हाल अबू धाबी में अगर आप हैं तो एब्सोल्युटली स्मूथ फ्लोइंग, कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं नज़र आ रहा है। दुबई में अगर आप हो तो थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिलेगा शेख जायद रोड पे, बहुत ही थोड़ा, लिटरली बर्षा से जाते हुए टुवर्ड्स द मॉल ऑफ द एमिरेट्स। उसके अलावा ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। E11 पे ट्रैफिक है एयरपोर्ट रोड से टुवर्ड्स अल्ताउन, 311 पे ट्रैफिक है मर्व से टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एरिया इन शारजा, एक एयरपोर्ट रोड के पास एक्सीडेंट हुआ है, दूसरा नेशनल पेंट्स के फ्लाईओवर के पहले एक्सीडेंट हुआ है, तो जिसके चलते ट्रैफिक काफ़ी है। डबल एक्सीडेंट ऑल्सो रिपोर्टेड ऑन E311 नियर अरेबियन ब्रांचेस गोइंग टुवर्ड्स द सिटी लैंड मॉल, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाइए। इसके अलावा अगर आपको कहीं ट्रैफिक नजर आया तो प्लीज हमें बताइए ऑन 800-81-003। मैं हूं नील, दिस इज टीएसपी।
0: दिस इज टीएसपी, द होम ऑफ टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस। दिस इज टॉक 100.3 टीएसपी, बिजनेस एडवाइस, टिप्स एंड रिसोर्सेज। टॉक 100.3।
2: I'm Maura Fogarty with your business update. Elon Musk's SpaceX has officially filed for what is expected to be the largest initial public offering in Wall Street history. Mr. Musk plans to raise $75 billion. In a departure from standard practice, SpaceX says it wants to sell its shares at $135 each. Greg Martin is a managing director at Rainmaker Securities. The U.S. Department of Agriculture has confirmed a case of New World screwworm in Texas. The department said it was taking immediate steps to contain and eradicate the parasite, which can devastate livestock herds. Experts have warned that an outbreak could cause huge losses to the cattle industry in Texas and push up beef prices in the U.S. Cuba's central bank says Visa and MasterCard payments in the country will be suspended from Saturday because of sanctions imposed by the United States. It said a foreign partner that had previously processed card transactions for Cuba had decided to limit operations after the executive order by Washington on May 1st that broadened sanctions on commerce with the Caribbean nation. The U.S. order is another blow to Cuba's economy and its struggling tourism industry. And that's your business update.
0: Talk 100.3.
1: Hello and welcome to TSB Talk Sport.

0: Here it is. Tony Valente is in charge of infrastructure at BC Place.
1: You know, I think when people look at this turf, they say, you're like, oh, it's just grass. But it is much more than just grass. This is really a complex system of different things working together, whether that be irrigation, vacuum ventilation, or the hybrid sod itself.
0: Yes, you heard that right. The pitch was installed with a built-in vacuum system to manage moisture. Now, it's up to the BC contractors and crews to maintain that perfection.
2: How many people are responsible for making sure it stays this nice?
1: We have our entire BC Place conversions team, as well as some international experts, and then our design team and others supporting. So you're probably looking, I mean, just to give a round number, something between, you know, 15 to 50 people, all of them doing their separate parts to make it happen.
0: As for how much this costs, Valente doesn't have a breakdown for just the pitch. It's budgeted as part of the up to $180 million spent to upgrade BC Place ahead of the tournament.
1: And it's really been an effort, both with all of our local companies showcased, but as well with also companies from around the world as well.
2: Are you tempted just to go run on it?
1: No, I just want to look at it and admire it.
0: Now that the turf is in the stadiums and handed over to local crews, Sorokin says he's finally sleeping through the night, no longer waking up with grass anxiety.
3: Probably in the last month is when I first started getting better sleep in the last 8 years. I hope I can enjoy it more than be worried about it when the games kick off.
4: TSB, Talk Sport and Business. Talk 100.3.
5: Two splendid years of insurance market metro station. 2 years of helping the UAE move, choose, and stay protected. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurancemarket.ae.
6: Markets don't sleep, so why should you? Introducing Trade 24/7, the modern way to trade global markets anytime, anywhere. From precious metals and commodities to global indices, all in one powerful platform. With instant deposits and withdrawals, your money moves as fast as you do, backed by Acuity-powered signals, so you're always one step ahead of the market. Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
7: This is Talk 100.3.
4: The Journal on TSB. The latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
8: Hello and welcome to TSB. We'll have a check on what's happening in the financial markets. Crypto, Bitcoin is trading 1.39% lower as compared to yesterday at 63,128. Ethereum at 1,762. XRP 1.17 and Dogecoin on 0.0886. As far as the European markets are concerned, DAX growing steadily, 0.79% up. FTSE 100 down by 0.02%. CAC 40 up by 1.2%. IBEX 35 also up by 0.79%. And Stoxx 50 also up by 0.54% in the day's trade.
4: Talk 100.3. Traffic.
8: Traffic ka haal. If you're in Abu Dhabi, I can tell you, bhai makkhan. Abu Dhabi में कभी ट्रैफिक मैंने देखा ही नहीं है, पता नहीं कैसे, यानी कि लोग वहाँ पे गाड़ियाँ खरीद के बस गैराज में पार्क कर देते हैं, ऐसा लगता है मुझे। जहाँ तक दुबई की बात है, ढेर सारा ट्रैफिक है। दुबई ट्रेंट सिटी के पास ट्रैफिक है ऑन शेख जायद रोड गोइंग टूवर्ड्स बर्शा हाइट्स, उसके बाद आगे जाके ट्रैफिक मिलेगा आपको थोड़ा सा नियर अलसफू सॉरी सफ़ा के पास, इनफैक्ट ट्रैफिक एक एक्सीडेंट भी रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद आगे ट्रैफिक नियर द सिटी सेंटर डेरा गोइंग ऑल द वे टूवर्ड्स अल ताउन 311 पे ट्रैफिक है सिटी सेंटर मर्डर से टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल एरिया इन शारजा अल रैंच अरेबियन रैंचेस के पास जो ट्रैफिक था वो अभी भी कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ गया है। इट्स गॉन ऑल द वे टूवर्ड्स दुबई मोटर सिटी, सो मोटर सिटी से ट्रैफिक शुरू हो रहा है गोइंग टूवर्ड्स ग्लोबल विलेज। एक एक्सीडेंट है सिटी में लैंड मॉल के पास जिसके चलते इतना सारा ट्रैफिक है। E44 पे ट्रैफिक दुबई हिल्स मॉल के पास एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसके चलते पीछे से ट्रैफिक जा रहा है ऑल द वे टूवर्ड्स बिजनेस बेस। के अलावा अगर आपको कहीं ट्रैफिक नजर आए तो प्लीज हमें बताइए ऑन 800-8-1003। मैं हूं नील, दिस इज टीएसबी।
4: टीएसबी टॉकिंग स्पोर्ट्स बिजनेस एंड मोर। टॉक 100.3।
9: ब्रो, इमेजिन यू बुक योर ड्रीम होम and then drive away in a brand new Jador T2.
10: Yeah, right. I wish.
9: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
10: And the apartments?
9: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
10: I'm going now.
9: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800 5300 now.
11: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own. Sedan, SUV, luxury or commercial. Pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
4: TSB. Business advice, tips and resources. Talk 100.3.
12: I'm Maura Fogarty with your business update. Elon Musk's SpaceX has officially filed for what is expected to be the largest initial public offering in Wall Street history. Mr. Musk plans to raise $75 billion. In a departure from standard practice, SpaceX says it wants to sell its shares at $135 each. Greg Martin is a managing director at Rainmaker Securities. The U.S. Department of Agriculture has confirmed a case of New World screwworm in Texas. The department said it was taking immediate steps to contain and eradicate the parasite, which can devastate livestock herds. Experts have warned that an outbreak could cause huge losses to the cattle industry in Texas and push up beef prices in the U.S. Cuba's central bank says Visa and MasterCard payments in the country will be suspended from Saturday because of sanctions imposed by the United States. It said a foreign partner that had previously processed card transactions for Cuba had decided to limit operations after the executive order by Washington on May 1st that broadened sanctions on commerce with the Caribbean nation. The U.S. order is another blow to Cuba's economy and its struggling tourism industry. And that's your business update.
7: This is Talk 100.3.
8: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. Main hoon Neel Oja on Talk 100.3. Maine thodi der pehle jab hum football mein AI ki baat kar rahe the na, tabhi maine aapse pucha tha ki kya aapko ye science physics samajhne mein interest hai? क्या आपको ये जानना है कि क्रिकेट में जो सिक्सेस लगते हैं और हमें फटाफट से ग्राफिक्स दिखाते हैं कि 90 मीटर का छक्का लग गया, 82 मीटर का छक्का लग गया, 23 मीटर ऊपर गया और फिर जाके छक्का लगा 87 मीटर्स का, वो कैसे बनाते हैं? वो कोई मेजरिंग टेप लेके तो नहीं बैठे होते कि बल्लेबाज ने छक्का मारा और तुरंत लेके टेप लेके निकल पड़े गए, या बल्लेबाज रुको वहां पर और डर करके टेप लेके पहुंच गए जहां पर गेंद गिरी और मेजर किया, अच्छा भाई 90 मीटर? नहीं, ऐसा नहीं होता ना. कैसे होता है? व्हाट इज द मेथड? सो मैंने आपको कहा था कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन टू दिस, बिकॉज थोड़ा सा साइंस है, ठीक है ना, तो अगर आपको है कि भाई हाँ भाई बताओ यार, क्यूरियोसिटी हो रही है आपको भी, तो फिर एक मैसेज कर दो, क्रिकेट लिखो, CRICKET, क्रिकेट एक लिख के भेज दो जल्दी से ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई इंटरेस्ट है, या तो फिर येस लिख के भेज दो ऑन 0586861003. दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर, 0586861003. एंड ये मैंने पहले भी कहा था और काफ़ी सारे लोगों ने यार क्रिकेट लिख के भेजा, काफ़ी सारे लोगों ने येस लिख के भेजा, एंड आई एम सो ग्लैड दैट देर आर सो मेनी पीपल हु यू नो वॉन्ट टू हियर दिस. यूसुफ का मैसेज आया था, असलम का मैसेज आया था, देन देर वॉज दिस मैसेज फ्रॉम विवेक, निशांत का मैसेज है, केजर का मैसेज है, ठीक है, देर आर स्टिल मैसेजेस देर आर कमिंग इन. ये भाई साहब ने अपना नाम ही नहीं लिखा है, या मैडम है जो भी है, डॉट लिख के भेज दिया सिर्फ उनका नाम में. तो please write your name as well, so I know that you know who you are, so that I can you know address you. Aapka naam jo hai, Dinesh naam hai unka, Dinesh Shivlani. So Dinesh, thank you so much. Then there is another message bina naam ke unka message aaya hai, Leo. Okay, so there are more messages that are still pouring in. There is a message that's come in from Rishad, another one from Kutbuddin, there is another message that's come in from Vishwesh. Jignesh ka message hai, very good, sweet. So why, how do you know ki bhai ye chakka jo pada hai, jab hum TV dekh rahe hai, abhi IPL dekh raha hai, IPL mein itne sare chakke pade yaar, ye wo bacche Vaibhav Suryavanshi ne jo hai wo 72 chakke maar diye. By the way, just a shameless plug, Vaibhav Suryavanshi ka sabse pehla interview TV pe jo hua tha wo maine kiya tha, sachi. Yeah, this was 2 years before. ठीक है ना, और अगर आपको ढूंढना है कि वो करे क्या बात है, कैसे यार नील भाई आपने कर लिया, कैसे कर लिया, तो that was under 19 Asia Cup when he was playing for India. तब I was doing the commentary for TV and तब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, and that is on my Instagram handle. Super Neil is my Instagram handle. SUPER Super NEEIL. ठीक है, ये हैंडल अगर आपको बराबर से मिल गया ना, मेरा स्पेलिंग बराबर लिख लिया आपने, SUPER Super NEEIL, तो आपको सबसे ऊपर ऊपर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी का सबसे पहला इंटरव्यू देखिएगा, बड़े मजेदार कॉन्वर्जेशन है हमारी. ओके, कमिंग बैक टू क्रिकेट नाउ, एंड नाउ दैट आई नो दैट यू नो योर लव फॉर क्रिकेट इज अमेजिंग एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसे मेजरमेंट्स कैसे होती है क्रिकेट में, कि छक्का मारा, बैट से निकला, बूम एंड बॉल गया बाउंड्री के बाहर. तो इतनी देर में तो कोई टेप निकाल के बैठने नहीं वाला है, एंड दे आर नॉट डूइंग अप्रोक्सीमेशंस कि अच्छा ठीक है बाउंड्री के इतना मीटर बाहर गया तो चलो ठीक है 72 मीटर बोल देंगे, 70 मीटर की बाउंड्री है ये करीबन 1.5-2 मीटर होगा, चलो ठीक है 72 बोल दो. नो, ऐसा नहीं होता है. दिस इज डन बाय मेथड कॉल्ड द ट्राइंगुलेशन मेथड. ट्राइंगुलेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि देर आर 3 पॉइंट्स दैट आर मेजर्ड. सो कैसे होता है ये, ग्राउंड में देर आर 10 हाई स्पीड कैमराज, ठीक है, पूरे ग्राउंड में, गोलाई में पूरे ग्राउंड के 10 हाई स्पीड कैमराज होते हैं. अभी हाई स्पीड कैमरा का मतलब क्या है कि बॉल जितनी तेजी से जाती है ना, ये कैमराज जो है इनका जो अपर्चर स्पीड है वो उस तरह से बनाया जाता है ताकि वो बॉल की ट्रेजेक्टरी को जो है, मूवमेंट को जो है, फटाफट कैप्चर करें. ठीक है, सो देयर आर 10 सच हाई स्पीड कैमराज. अब ये क्या करते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, एक बार जब गेंद पे बॉल लग गई, सॉरी गेंद पे बैट लग गया एंड बॉल जा रही है, तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 2 कैमराज विल ट्राई एंड एम एट द बॉल, और उसको बॉल को पूरा फॉलो करते हैं. ठीक है ना, तो 2 अलग अलग एंगल से ये बॉल को पिक किया जाता है. जब ये हो रहा है तो क्या बन गया है, यहां पर बन गया है ट्राइंगल. पॉइंट 1 इज कैमरा नंबर 1, पॉइंट 2 इज कैमरा नंबर 2, एंड पॉइंट 3 इज द बॉल. तो बॉल और ये 2 कैमराज के बीच में एक ट्राइंगल बन जाता है, और ये ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल का डेटा जो है वो कंप्यूटर में फीड किया जाता है, एंड दिस इज हैपनिंग ओवर 100 times per second. ठीक है ना, हंड्रेड ऑफ टाइम, इनफैक्ट 100 भी नहीं कहूंगा, लाइक 500-600 विजुअल्स जो है वो पर सेकंड के हिसाब से वो कैप्चर करते हैं ये कैमराज, और जैसे जैसे बॉल मूव होती है ना, वो डेटा जो है कंप्यूटर में आते जाता है इनके पास. एंड इवेंचुअली व्हेन द बॉल ड्रॉप्स, जब पहला टप्पा खाता है बॉल बाउंड्री के बाहर, तो बल्ले से जब लगा और बॉल जब टप्पा खाई, तब तक ये ट्राइंगल जो है ना अपना शेप बदली करता रहेगा, क्योंकि 2 कैमरा तो फिक्स्ड है, बट बॉल का शेप चेंज, आई मीन बॉल का पोजीशन चेंज हो रहा है. तो बॉल के साथ साथ, अगर आप समझो अपने हाथों से अपने 2 उंगलियां और 2 अंगूठों को साथ में कर दो, एक ट्राइंगल बनाओ, तो अगर पहली 2 उंगलियों की टिप को अगर मूव करोगे तो ट्राइंगल का शेप चेंज होगा ना, तो बिल्कुल उसी तरह से ये ट्राइंगल का शेप चेंज होते रहता है, एंड इट फॉर्म्स अ कर्व, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट कर्व ये लोग डिस्टेंस रियल टाइम मैप करते हैं कि ये जो डिस्टेंस जहां से शुरू हुआ है वहां तक गया है, एंड ये कर्व, और ये कर्व किस तरह से गया है, किस एंगल पे मूव हुआ है, किस हाइट पे गया है, वो सारी चीजें जो है वो निकालता है इंफॉर्मेशन, एंड देन दे यूज द डेटा विथ अदर फैक्टर्स लाइक इनिशियल वेलोसिटी, लॉन्च का एंगल क्या था, यानी कि मारने का जो एंगल था वो क्या था, ग्रेविटी बॉल पे पड़ रही है ऑब्वियसली, एयर रेजिस्टेंस. अगर आप देखो धर्मशाला में लंबे लंबे छक्के पड़ते हैं एज कम्पेयर टू मुंबई और चेन्नई, क्योंकि वहाँ पर हवा में जो रेजिस्टेंस है वो कम है, हवा जो है थोड़ी सी पतली है वहाँ पर, एज कम्पेयर टू सिटीज़ विच आर क्लोजर टू सी, वहाँ पर हवा में नमी ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है हवा में. तो लंबे छक्के जो है मुंबई में और चेन्नई में कम पड़ेंगे एज कम्पेयर टू धर्मशाला. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कम इन टू प्ले, एंड देन इवेंचुअली कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, दे डू देयर कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द ट्राइंगुलेशन मेथड एंड द अदर फैक्टर्स लाइक इम्पैक्ट वेलोसिटी, लॉन्च एंगल, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस. And finally, they come to conclusion कि हाँ भाई इतने distance का छक्का लगा है. पर यह सब हो रहा है milliseconds में. मुझे explain करने में जितना time लगा उतनी देर में तो 4 छक्के लग जाए ना भाई. पर there are super computers that are working on this and super fast cameras that are working on this to get this data to you. आप सोचो कि आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको चाहिए, अदरवाइज चाहिए भी नहीं होता है यार, क्या क्या फर्क पड़ता है कि 90 मीटर का छक्का मारा या 60 मीटर का छक्का मारा, छक्का छक्का होता है. But to give you that extra information, there is so much technology that is getting used in the world of cricket. Hai na amazing? अगर अच्छा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी लगी मेरी बातें, तो एक थम्स अप भेज दो ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं जो इतना इतनी सारी रिसर्च करता हूँ, इतनी सारी पढ़ाई करते रहता हूँ क्रिकेट के बारे में और आपको सुनाता हूँ आके, लाइक आई मीन आई कुड हैव केप्ट इट टू माई सेल्फ राइट, बट आई एम शेयरिंग इट विथ यू सो दैट यू ऑल्सो एन्जॉय इट. एंड कभी बात बात हो रही है अपने दोस्तों वोस्तों में तो आप थोड़ा सा शो ऑफ कर सको, अरे ये मुझे पता है कैसे होता है ना, तो थोड़ा सा आपके पास भी एक एडवांटेज हो जाता है. तो एक थम्स अप भेज दो इफ यू हैव लाइक दिस कॉन्वर्जेशन, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. नहीं समझ में आया तो बोलो भाई समझ में नहीं आया, कि यार ये भाई क्या बोला, ये सब सर के ऊपर से गया. तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है फिजिक्स की क्लास में सो गए होंगे स्कूल में आप, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल. बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी चैलेंजिंग चीज़ें हो जाती हैं. बट आई हैव ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, यू नो इसमें और भी डेटा पॉइंट्स है और भी इन्फॉर्मेशन है, बट आई हैव ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. सो इफ यू लाइक इट, या एक थम्स अप वुड ऑलवेज डू गुड टू मी. आई फील कि हाँ यार, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें और बताऊंगा, देन आई ट्राई एंड फाइंड मोर सच इन्फॉर्मेटिव थिंग्स एंड शेयर इट विथ यू. बट एज आई से दैट यू कैन ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर थिंग्स दैट यू लाइक टू हियर एंड आई विल डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विथ यू. ओह देयर आर बंच ऑफ थम्स अप्स दैट आर कमिंग इन, यार वेरी स्वीट ऑफ यू गाइस, दैट्स सो सो स्वीट ऑफ यू, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव अबाउट रेडियो. यू नो जमाल का मैसेज है, उन्होंने थम्स अप भेजा एक बड़ा वाला. देर आर अदर मैसेजेस हैव कम इन, ये लियो का मैसेज आया है, देर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम यूसुफ, another one from Javed, there is this message that's come in from Kutbuddin, double thumbs up coming in from Dinesh, thank you so much. Govind ka bhi thumbs up aa gaya, that's so sweet of you guys here, thank you so much. I appreciate this response, I appreciate you know becoming a community. Yaar mujhe aisa hamesha lagta hai ki hum aap mere listener, main presenter aisa nahi hai, hum ek community, hum ek aise group of people hain jinko maza aata hai ye sari baat sunne mein. Aur agar aapko maza aaya hai, aapne thumbs up bheja hai, to please I will रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कोई क्रिकेट के या कोई भी स्पोर्ट के फिटनेस के टॉपिक पे अगर कोई बातें सुननी हो तो मुझे बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू यू नो स्पीक अबाउट इट. इफ देर आर एनीथिंग, देर इज एनीथिंग स्पेसिफिक दैट आई डोंट नो, आई विल डू माई रिसर्च एंड कम. और हम या तो फिर हम किसी एक्सपर्ट को लेके आएंगे उसके बारे में. बट वी विल डेफिनेटली हैव दिस कॉन्वर्जेशन मोर ऑफन. आई एम नील ओझा, आई विल टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक राइट हियर ऑन TSB.
13: दिस इज फैन नेटवर्क न्यूज फ्रॉम द BBC.
14: BBC News with Jane Steele. The Israeli Defense Minister has said his forces will continue ground operations in Lebanon despite the announcement in Washington of a renewed ceasefire. Israel Katz said the IDF had freedom of action backed by the United States. Conversely, the deal requires Hezbollah, which wasn't involved in the talks, to halt its attacks against Israel and withdraw from southern Lebanon. Correspondents say it's unlikely to alter much. In a largely symbolic move, the U.S. House of Representatives has passed a resolution calling for President Trump to win approval from Congress to continue his war against Iran. Four Republicans sided with Democrats in a vote being closely watched for divisions within the president's own party. Fiji has rejected plans by an Australian billionaire to send hundreds of thousands of tons of rubbish to the island nation to be burned for energy production. The government said Fiji would have become the Pacific's ashtray. The European Union has begun preparations for accession talks for Ukraine and Moldova. It follows Hungary dropping its previous objections. SpaceX has filed for what's expected to be the largest IPO in Wall Street history. Analysts say this could see Elon Musk become the world's first trillionaire. Fighting is reported to have continued in the Somali capital Mogadishu. Clashes between rival political factions broke out on Wednesday over delayed elections. A Nepali climber who went missing 6 days ago on Mount Everest has been found alive, crawling back towards base camp. Dharma Sherpa got lost on the upper reaches of the world's highest mountain. He was presumed dead until he was spotted by a rubbish management team early on Thursday. BBC News.
13: Fan Network News from the BBC. Talk music. Brought to you.

0: insurersmarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: This is Talk 100.3.
2: Journal on TSB. The latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
3: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. Let's have a quick check on what's happening in the world of finance. US markets are pre-opening. Dow Jones up by 1.19%. S&P 500 slightly lower opening, 0.21% down. NASDAQ is down 0.92%. Russell also down 1.31%. VIX is up by 1.74%. Yani ki volatility index jo hai wo agar upar hoti hai, main hamesha aapko batata hu ki VIX ye agar aap jab bhi dekhoge na, agar ye green mein hoga to stocks jo hai wo generally red mein dikhenge aapko. Indices jo hai, sare index jo hai na, wo aapko red mein dikhenge. VIX and index, they always go opposite. Volatility jitni zyada man mein lagegi utna stock market jo hai wo fear mein chalega, red mein chalega. So this is how it is. VIX is positive 1.74, and that's why you see S&P 500, NASDAQ, Russell, all three are down in the red. Quick check also on the European markets. DAX 0.8% up, FTSE 100 down 0.03%, CAC 40 up by 1.17%, and Stocks 50 up by 0.52% in the day's trade. Main hoon Neil, this is TSB.
2: Talk 100.3. Traffic
3: ka haal, if you're in Abu Dhabi, absolutely smooth, kahin pe koi traffic nahi hai. Dubai mein traffic thoda sa Sheikh Zayed Road pe hai, near Business Bay going towards the Trade Center roundabout. Aage jaake traffic milega aapko City Center area se towards Al Taun 311 pe traffic. Varka se towards Industrial Area in Sharjah Airport Road ke paas ek accident hua hai, uske baad mein dusra accident jo hai wo abhi bhi clear nahi hua hai, that is near Moesna. Iske alawa aapko traffic milne wala hai Arabian Ranches se aate hue towards Global Village, massive traffic jam. इसके अलावा अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो प्लीज हमें बताइए ऑन 800-81003.
2: Talk 100.3 TSB Sports Headlines. Talk 100.3
4: BBC Premier League Update from the home of Premier League football.
5: Hello, I'm Connor O'Grady at the BBC Sports Centre. Manchester City have had an opening bid for midfielder Elliot Anderson rejected by Nottingham Forest. There's a growing expectation that the England international will leave the City ground this summer. City have now formalised their interest. Well, a potential fee for Anderson could be a record for a British player since the over $141 million Arsenal deal for Declan Rice back in 2023. The Manchester United midfielder Kobbie Mainoo says he was focusing on his dream of playing in the World Cup despite struggling for game time under previous head coach Ruben Amorim. Mainoo wasn't favoured under the former United boss, but since the arrival of Michael Carrick in January, the midfielder has started all 16 games.
6: I tried to keep it off my radar completely and just focus on the games that was in front of me, because at the time they wasn't coming as often as I'd like, so when I was getting a game for United, that was all my focus was on. Obviously, you know, the World Cup's at the end of the year, so that is a big dream and a big goal for any player. But I try to just keep my focus on the games ahead of me.
5: And the former Chelsea striker Chris Sutton says Andoni Iraola has earned the opportunity to become the new Liverpool head coach. The Spaniard is set to succeed Arne Slot later on this week. Sutton says it's a good time to take over at Anfield.
7: This is an enormous step for him, but he's done the hard yards and earned the right. But it's, you know, it's a difficult time to take over, but in some ways you're better off taking over when the team has had a bit of a stinker the previous season. And by Liverpool standards, this season has been a bit of a stinker.
5: And for more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
4: BBC Premier League Update from the home of Premier League football.
1: This is Talk 100.3.
3: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. Main hoon Neil Oja on Talk 100.3. I'm so glad to see so many responses that have come in, so many messages that have come in about conversation that we had about the triangulation method, jiske through aapko pata chalta hai ki bhai कितना दूर गया है बॉल जब छक्का वक्का लगता है. हम आईपीएल देख रहे थे, आईपीएल में हमने देखा कि सिक्स मारा तो फटाक से आता था, 92 मीटर सिक्स, 23 मीटर हाइट, ये सारी चीज़ें कैसे आती थी इसका पूरा साइंस समझाया. फिर मैंने आपको कहा कि अगर आपको कोई सवाल है, आप कोई चाहते हो कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ, So I definitely would love to. Believe me, I would love to. I mean, I do my research. I study all of these things. And it becomes, you know, part of me in some way to actually come in and be a part of this conversation with you. There's a message that has come in from Samir. Samir Daftari has messaged in. Unhone likha hai, "Hi Neil, I like the info and most complicated thing in cricket is Duckworth-Lewis formula." First up, thank you so much, Samir bhai, for this appreciation. And the most complicated thing in cricket, Duckworth-Lewis. Well, first thing, Duckworth-Lewis ab jo hai, wo Duckworth-Lewis turn ho gaya hai. Kyunki Duckworth-Lewis jo hai, wo ab they have retired, you know, from being the greatest statisticians and mathematicians that they are. So they have retired from this work and Stain jo hai ab ye sara sambhal rahe hain. So it's Stern, sorry, Duckworth-Lewis and Stern. So the formula now is the Duckworth-Lewis Stern formula. Ye main aap fursat mein samjhaunga main. Believe me, अच्छे से समझाऊंगा मैं. I can explain this method. Primarily, in short, अगर आपको समझना है ना कि Duckworth-Lewis Stern method क्या है, तो it is not just about calculations of कितने ओवर में कितने रन्स चाहिए. It is not that. It takes variables. जैसे कि मैं समझाऊं अगर आपको, तो Duckworth-Lewis Stern जो है ना, उनका variable पता है क्या है? It primarily uses this concept of using resources. के कितने resources किसके पास पड़े हैं? In the simplest way. कि अगर समझो पहली टीम ने 20 ओवर बैटिंग करी और 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए, ठीक है? तो they will not divide 200 divide by 10, 200 divide by 20, यानी कि 10 per over. और अगर 10 over की second innings में 10 over का match होगा, तो फिर चलो 10 into 10, 100, तो चलो इतने में कर लो. ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? This calculation is purely based on how many resources each team has. यानी कि अगर पहली टीम ने पूरा 20 over खेला है और उन्हें 5 विकेट गए थे उनके, तो Duckworth-Lewis will calculate कि भाई उनके 5 विकेट गए ना, तो उन्होंने 5 resources अपने utilize किए, ठीक है? अब जब सेकेंड इनिंग्स शुरू होगी और पूरे 20 ओवर नहीं खेलने होंगे, 10 ओवर खेलने होंगे, तो दे विल कैलकुलेट कि अच्छा ठीक है, इनके पास ओवर्स कम है, यानी कि ओवर्स इज वन रिसोर्स, नंबर ऑफ बैटर्स इज अनदर रिसोर्स, राइट? सो अगर ओवर्स ये रिसोर्स कम हो गया है, बट बैटर्स तो इनके पास पूरे 10 हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी. बिकॉज पिछली वाली टीम ने तो अपने सिर्फ आधे रिसोर्सेज यूज किए थे, यहां पर इनके पास 10 रिसोर्सेज हैं, तो कैन दे, so the numbers will change based on that, ठीक है ना? Overs remaining to score, okay, and wickets remaining, that is wickets जो है, क्योंकि अगर आपके पास 10 विकेटें पड़ी हैं 10 ओवर में, तो आपके पास रिस्क लेने का चांसेस जो है ना वो बढ़ जाता है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, द कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? एंड जो उनका फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. अगर If I can remember it correctly, it's basically the target score for the team that is batting second is resources of the team 1 divided by the resources of team 2 multiplied by the score of team 1. Samjha? Nahin? Isliye maine kaha na complex hai ye. But this is the formula that it generally uses. But the idea is, the core idea samajhna mere khayal se zaruri hai yahan pe, as compared to the mathematical formula. The core idea is the number of resources available. आपके resource, दो resource होते हैं batting करने, जो भी team आती है उनके पास, second team अगर आती है तो उनके पास दो resources होते हैं. एक resource होता है the number of overs, दूसरा resource होता है the number of batters, ठीक है ना? तो इस हिसाब से आपका जो क्या कहते हैं formula है, वो इस हिसाब से devise हुआ है, as compared to just using the mathematical formula of dividing the run rate at which the first team scored and using the same run rate to give it to the second team. Nahin, waisa nahin hota. Kyunki aap socho agar ke pehli team ne 20 over batting kari, 8 wicket khoye aur banaye 200 run, hypothetically, theek hai? Second team agar batting karne aati aur unke paas, unko sirf 5 overs hi batting karni hai, theek hai? Barish ho rahi hai, 5 overs ka hi match hoga, to agar 5 over ki batting karni hai aur unke paas 10 wickete hain, bhai 10 wickete, 5 ओवर में 10 विकेटें, और अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाऊं कि भाई 200 रन बनाए 20 ओवर्स में, तो इन मैथमेटिकली इनको क्या करना है, 50 रन यानी 51 रन बनाने हैं 5 ओवर में, राइट? 50 run, 51 runs, 5 overs mein with 10 wickets in hand is a lot easier as compared to scoring 201 runs with those 10 wickets in hand in 20 overs. And that's why, keeping that resource factor in mind, the Duckworth-Lewis turn method uses the resource factor while they're trying to adjust and understand this concept. I hope I was able to make you understand the concept the concept behind the Duckworth-Lewis turn method. It is a little complex mathematically, but if you understand ki kyun hota hai, what is the reason behind it, so then this is why it is. Sameer, if you have any questions, any doubts, I'll be more than happy to answer. But I hope I was able to explain the concept. Theek hai na? Agar aapko mathematically detail mein jana hai, iska science samajhna hai, iske stats samajhna hai, to that'll take some long time, and fir wo thoda sa beyond everyone ho jata hai, kyunki sabko shayad itna interest nahi hoga, bhai iske piche ka math samjhao. But agar concept jo hai na, I'm sure everyone would be happy to understand and learn. Horace ka message hai, are you in favor of Duckworth? It turns unfavorable to one team. I don't think it turns unfavorable. It was wrong back in the days jab ye log resources calculate nahi karte the. ठीक है ना. क्या बात है, समीर का भी यही मैसेज आया है. हाउ अबाउट 92 वर्ल्ड कप, वन बॉल 22 रन्स. ओ या, ये बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली वेर आई एम कमिंग टू, कि तब जो है ना रिसोर्सेज कैलकुलेट नहीं होते थे. तब जो है बॉल ओवर्स नंबर ऑफ ओवर्स एंड कर लो, एंड दैट इज वेयर द एरर केम थ्रू. एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी दे हैव रिवाइव्ड Duckworth-Lewis मेथड इन सो मेनी डिफरेंट वेज, एंड Duckworth-Lewis टर्न मेथड के कितने क्या कहते हैं ना, कितने तरीके से उसको रिवाइज किया है, कितने तरीके से इसको क्या कहते हैं प्रिसाइज करने की कोशिश की है, फाइन ट्यून करने की कोशिश की है, ताकि वी गेट इट एब्सोल्युटली राइट. बट आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट Duckworth-Lewis सिस्टम वॉज नॉट यूज्ड इन द सेमीफाइनल ऑफ 1992. हाँ, Duckworth-Lewis turn was not used in that 1992 this thing, because it actually was devised by Frank Duckworth and Tony Lewis because of what happened there. जब 92 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, ठीक है ना, वेयर द लास्ट पार्ट ऑफ द गेम में बारिश पड़ गई एंड साउथ अफ्रीका रिक्वायर्ड 22 रन्स टू विन फ्रॉम 13 डिलीवरीज, ठीक है ना, 22 रन्स चाहिए थे 13 गेंदों में. बट जब वेन प्ले रिज्यूम द रिवाइज टारगेट वॉज 21 रन्स फ्रॉम वन बॉल. नाउ दैट बेसिकली यू नो वॉज Absolutely absurd. अब वो कैसे कैलकुलेशन किया था, क्यों हुआ था, वो पता नहीं है. बट वन थिंग फॉर श्योर, दैट ये जो चीज़ें हैं ना, कि दिस वॉज द इंस्पिरेशन, एंड आई रेड इट समवेयर, कि फ्रैंक Duckworth, यू नो द वन हाफ ऑफ Duckworth-Lewis, फ्रैंक Duckworth सेड कि ही हैड हर्ड अ रेडियो कॉमेंट्री और ऑन रेडियो समवन सेड कि आई एम श्योर दैट समवन कुड डू समथिंग अबाउट दिस, कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल. And uske baad, they started working towards the DL method. And the Duckworth-Lewis method, in fact, was used in 1997. So, 5 years after the semi-final of 1992. And formally, ICC ne use kiya 1999 mein as a standard method across all games. So, this is how Duckworth-Lewis came into being, Sameer. So, like you mentioned, ke 1992 World Cup, it was not the 92 World Cup jahan pe DLS use hua tha. Duckworth-Lewis, in fact, was introduced in 97 and 98 mein jo hai, it actually, ICC accepted it, chalo theek hai, aisa karenge. Duckworth should be cancelled. The game should be cancelled. It does not take into factor the individual's ability to turn the game around last minute, sometimes tail end perform. Rajesh Balkrishna. Rajesh, then you come up with a solution. Game hi cancel kar do. Aisa thodi hota hai yaar. Agar samjho 20 ओवर का एक इनिंग्स हो गया है, दूसरे इनिंग्स में अपने को पता है कि 5 ओवर कर सकते हैं, 5 ओवर्स का मैच कैन बी डन, वुड यू जस्ट कैंसिल द गेम? नो, यू वुड नॉट. यू प्ले अ स्पोर्ट टू गेट रिजल्ट्स. So ideally, one should look at getting find solutions instead of saying क्या मैच बंद कर दो. ऐसा थोड़ी होता है. इन्हें ऐसे ऐसे तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिनके घर के दरवाजे पे भी अगर जाके बॉल लगती थी, वो बॉल उठा लेती थी और काट के फेंकती थी, बॉल तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलोगे. ऐसा थोड़ी होता है. फाइंड अ सोल्यूशन. वी ऑल्सो फाउंड अ सोल्यूशन. हम वहाँ पे 3 फिल्टर लगाते थे ताकि वो बॉल वो आंटी के दरवाजे तक जाए नहीं. ठीक है ना राजेश. सो या इंस्टेड ऑफ सेइंग गेम ही मत खेलो, ऐसा नहीं होता. सॉल्यूशन लाइक फुटबॉल, क्रिकेट भी इंडोर कर दो. दे हैव ट्राइड डूइंग दिस हुरेस, दे हैव ट्राइड डूइंग दिस कि क्रिकेट को इंडोर कर दो. बट आई टेल यू समथिंग, द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट इज दैट ओवरकास्ट कंडीशंस जब होते हैं, बादल जब होते हैं, तो बॉल स्विंग होती है. क्रिकेट इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोज फ्यू स्पोर्ट जो वेदर कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है. वेदर कंडीशंस के हिसाब से कोई एक टीम को फायदा होता है, कोई एक टीम को नुकसान होता है, ठीक है ना. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आप इंडोर कर दोगे तो यू आर कटिंग आउट ऑल द एक्सटर्नल वेदर फैक्टर्स. और फिर एसी अंदर चलानी पड़ेगी आपको लाजिम. आप एसी चलाओगे तो फिर एसी में बॉल एक ही तरह से मूव होगा, एक ही तरह का उसका मूवमेंट होगा, फिर वो बहुत बोरिंग हो जाएगी. फिर आप सोचो ना कि इंग्लैंड में जैसी बॉल मूव होती है वो, फिर आप वो मूवमेंट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी. राइट, देन विल बिकम लाइक यू नो गली क्रिकेट यार, कि आप सीमेंट पे बॉल फेंक रहे हो और लोग मार रहे हैं, वैसा हो जाएगा. मान गए बाबा नील की जय. वाह वाह वाह, क्या बात है हुरेस, थैंक यू सो मच ऑन एक्सेप्टेंस. और यहाँ पर राजेश ने कहा है दैट्स कॉल्ड फोर्स. भाई एक्ट ऑफ गॉड नॉट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस. इसको भाई यार कोई समझाओ कि स्पोर्ट में ये सारी चीज़ें नहीं होती है. यू प्ले अ स्पोर्ट टू गेट अ रिजल्ट, नॉट टू गेट अ ड्रॉ. टेस्ट मैचेस में बैक इन द डेज ड्रॉ होते थे, आज बताओ कितने टीम्स हैं जो ड्रॉ के लिए खेलती हैं. Meanwhile, Sameer bhai, I hope I have cleared your thoughts and doubts. And if you have any doubts, any thoughts, any ideas, happy to hear and happy to answer. I'm Neil Oja on TSB, trying to explain the world of sport in the best possible way I can. On Talk Sport and Business, right here on Talk 100.3.
1: This is Talk 100.3.
8: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: This is Talk 100.3. This is Talk 100.3.
2: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News.
9: News with Moira Alderson. The leader of Hezbollah has emphatically rejected a ceasefire between Lebanon and Israel, brokered by the United States. It allows Israel to continue its offensive in southern Lebanon, but requires Hezbollah, which wasn't part of the talks, to withdraw. The Iran-backed group has described the deal as futile, humiliating and disgraceful. Meanwhile, Israeli strikes in Gaza, which is also under a nominal ceasefire, have killed 11 people, according to health officials. They include five members of a single family. Pakistan says India is weaponizing water, with two recently announced projects affecting a shared river. Last year, India suspended a decades-old resource-sharing treaty. The Democratic Republic of Congo is the latest country to outline a voluntary repatriation program for its citizens amid ongoing attacks on foreigners in South Africa. Ghana and Malawi have announced similar schemes. 1 week before the World Cup tournament begins, FIFA has banned fans from bringing refillable water bottles into venues. Health experts have criticised the last-minute change. The French-Iranian author and artist Marjan Satrapi, who's best known for the book and film Persepolis, has died at the age of 56. The memoir portrays her childhood in Tehran after the Iranian Revolution. BBC News.
2: Fan Network News from the BBC. Grey coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Talk 100.3. TSB. Talk Sport and Business. Talk 100.3.
3: Hello and welcome to TSB. Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. There are teams, there are nations that love sport, but then there is one country that has gone beyond everything. There were so many challenges, so many questions that were asked, but this one nation broke records, became an affiliate nation in 2001 of ICC. From there, in 2013, became an associate member nation. That journey of about 12 odd years was obviously challenging. But then, in the next 4 years, what they did was something unimaginable. No country in the world has done this, what Afghanistan did. They became a full member nation from an associate member in just 4 years. That is a record. 2018, first test match is what they played. And now, In just a few days, they are going to play another test match against India. While they are preparing there, we have the honor and privilege of sitting with us is the man, the father, the founder of Afghanistan cricket, Mr. Alhadad Noori. Chief, thank you so much for joining us today. It's such a pleasure to have you here.
10: Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you. Thank you so much. I'm also proud of these words that you said about the Afghanistan cricket. But there is something, if I say, may I have to only English?
3: No, absolutely. We can talk in Urdu. If you talk
10: in Urdu, it will be easy. In English, it can be a little problem.
3: In English, I feel like there is a feeling missed. The emotions that are better in Urdu. Now, you have
10: said in Afghanistan cricket, अब कंट्रोल से थोड़ा थोड़ा बाहर होते हैं, मैं एहसासाती हो जाता हूँ
3: जी, बिल्कुल
10: बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट के जो स्टोरी है और वर्ल्ड क्रिकेट की जो हिस्ट्री है
3: जी,
10: अभी भी मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान क्रिकेट की स्टोरी कुछ अलग है, कुछ अजीब है। इसकी हर एक दो तीन महीने या एक साल की जो स्टोरी है उसके ऊपर अगर हम चाहे तो बड़े से बड़े मूवीज वगैरह
3: बिल्कुल
10: बना सकते हैं। और जैसे 93-94 में अफगानिस्तान की जो हालत थी
3: जी,
10: यानी हर दो किलोमीटर में एक कमांडर था और एक दूसरे से हम लोग लड़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने अभी भाई को भी बोला कि एक रीज़न थोड़ा ये हो गया था कि हमने पिशावर में अंडर 19 के लिए ट्रायल दिया, तो लोगों ने सिर्फ ये इसलिए कि वो पूछ रहा था कि आपका आप तो अफगानी हैं पाकिस्तानी ने, तो मैंने कहा कि ये तो सच है मैं अफगानी हूँ
3: जी,
10: तो मैंने उसको, उसने मुझे कहा कि आपको सेलेक्ट भी हुआ था
3: ओके,
10: तो फिर उन्होंने कहा कि यार आपके लिए नहीं हो सकता, वरना 5-6 बॉल मैंने किया और उन्होंने सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा। तो जब उन्होंने रिजेक्ट किया, मैंने बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और
3: दिल टूटा होगा ना,
10: बहुत ज़्यादा
3: जी
10: दर्द। मैंने उम्र भी 18-19 साल का उसी वक्त मेरा उम्र था, तो मैंने सोचा कि अफगानिस्तान का क्रिकेट हमें बनाना होगा।
3: बिल्कुल, क्या बात है।
10: तो अगर मैं उस वक्त की स्टोरी अभी तक बताऊँ तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट
3: आपने
10: कुछ, आप, कुछ मैं आपको
3: आपने जो शुरुआत करी है ना कि एक छोटा रिजेक्शन जो हुआ है उसके बाद से आपने ये डिसाइड किया कि ये नहीं डिसाइड किया कि मैं और कहीं जाके खेलूंगा, आपने कहा कि मेरे मुल्क में अब मैं क्रिकेट लेके आऊंगा। ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त एक ये थॉट बहुत कम लोगों की होती है ये, और वो भी एक 17-18 साल की उम्र में अगर ये सोच थी आपकी, उसके बाद आज जो है आपको कहा जाता है कि आप फाउंडिंग फादर ऑफ क्रिकेट हो, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान क्रिकेट के पहले कप्तान रह चुके हो। ये जर्नी आई एम श्योर चैलेंजिंग थी, आसान नहीं थी ये जर्नी। किन को आपको कन्विंस करना पड़ा कि नहीं यार आओ क्रिकेट खेलते हैं, कैसे हुआ ये, कहानियां क्या थी उस वक्त?
10: फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे घर में मेरा अबू और उनके जो भाई 10-11 भाई थे, तो इन लोगों से भी बहुत प्रॉब्लम था
3: okay.
10: लेकिन मेरा जो बड़ा अंकल था वो मेरा साइड ले रहा था तो यानी उन लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त भी जब मैं काबुल आया तो हमारे करेंसी एक्सचेंज का कारोबार था
3: okay.
10: तो मैंने पेशावर से अबू को बहाना बनाकर कि मैं डॉलर काबुल में बहुत महंगा है, मुझे डॉलर दे दो मैं उधर बेचता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं, वो हर चीज़ को बॉल बोलते थे, हर स्पोर्ट्स को बॉल बोलते
3: अच्छा।
10: थे। तो उन्होंने कहा नहीं आप बॉल खेलने के लिए जा रहे हो, तो मैंने कहा कि अफगानिस्तान में तो बहुत सख्त लड़ाई है, हालात अफगानिस्तान के बहुत अजीब और गरीब है, तो नहीं मैं डॉलर बेच के अब तो, लेकिन मैंने प्लान बनाया था
3: अच्छा।
10: मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, हर जिस दिन से मैंने स्टार्ट लिया है उसी दिन के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। 2009 और 10 तक जो हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया
3: जी,
10: तो उस वक्त तक जब मैं कैप्टन रहा, प्रेसिडेंट रहा, और क्या बताओ यार, एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहा था और आईसीसी और एसीसी के
3: जी,
10: जो पहले जो स्टार्ट के मेंबरशिप है वो सब मेरे नाम पे है।
3: बिल्कुल,
10: इवन ये जो लोगो
3: अफगानिस्तान का जो लोगो है जी
10: ये 1997 में मैं घर में बैठ के अफगानिस्तान के जो हिस्टोरिकल लोगो है उनसे थोड़ा कॉपी करके और क्रिकेट उसमें ऐड करके तो
3: क्या बात
10: इनके
3: है?
10: साथ कॉन्स्टिट्यूशन बना के मैंने ये बनाया है।
3: ये जो आप बातें कर रहे हैं ना मुझे ऐसा कहीं पर लगता है कि ये कहानी इतनी गहरी है कि एक इंसान ने बैठ के पहले तो ये सोचा कि मैं अपने मुल्क में क्रिकेट ले आऊँगा, उसके बाद अपने घर वालों से भी आपको चैलेंजेस आए, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस मुल्क में चैलेंजेस ऑलरेडी हैं, तकलीफ़ें ऑलरेडी हैं, वहाँ पर आप अपना कारोबार ना संभाल के कहोगे कि नहीं मैं बॉल खेलने जाऊँगा तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ़ होगी, और वहाँ से सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलना, उस पूरे क्रिकेट के सेटअप को स्ट्रक्चर बनाना, उसके लोगों को बनाना, पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्रिकेट का आईसीसी का मेंबरशिप पाना, एसीसी का मेंबरशिप पाना और फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना, इन सारी चीज़ों का आपको इंस्पिरेशन आया कहाँ से?
10: वो रीज़न तो मैंने बताया कि एक ही रीज़न था,
3: वो शुरुआत में जो पेशावर में
10: शुरुआत में जो हुआ उन लोगों का ये हक बनता था,
3: बिल्कुल
10: वो कंट्री था, वो बोल रहा था कि आपके पास आईडी पाकिस्तानी नहीं है अफगानी है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो उनका हक बनता था। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं बहुत कम उम्र का था, ये मेरे खून में ऐसे है कि मैं किसी भी चीज़ को जब टारगेट करता हूँ तो छोड़ता नहीं।
3: ओके,
10: तो एक दिन मेरे अबू ने किसी ने उसको कहा कि आपके तो सात बेटे हैं, हम भी सात भाई हैं
3: माशाल्लाह,
10: तो उसको बोला कि बेटे तो इतना ज्यादा है, सबसे बड़ा ये भी है, लेकिन इनके साथ तो आप जैसे बहुत यानी एहतियात के साथ आप इनके साथ बात करते हो। तो अबू ने उसको, मैं जब उधर से बाहर निकला तो मैं सुन रहा था, तो उसका उनको बोला कि ये कुछ अजीब फिक्र की और तबीयत के आदमी हैं, ये एक बात करो, हाँ कहा तो वो करेगा, ना कहा तो नहीं करेगा।
3: ओके,
10: तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी लिहाज से जो फितरती मेरा जो वो है, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसका स्टोरी ये है कि जब मैंने डॉलर भेज दिया तो मैंने किससे पूछा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या स्पोर्ट्स कोई भी कमेटी हो मुझे एड्रेस दे दे, तो किसी ने एड्रेस मुझे बता दिया, अभी भी मैं उस एड्रेस का अभी मैं बताता रहूँ, अभी तो अफगानिस्तान स्पोर्ट्स का एड्रेस गाजी स्टेडियम है उधर स्पोर्ट्स, लेकिन उस वक्त काबल शहरीनाव न्यू सिटी जहाँ पे अभी बीबीसी का ऑफिस है, ये अफगानिस्तान ओलंपिक का ऑफिस था।
3: क्या बात है।
10: हाँ, तो इधर मैं आ गया तो लेवाल के नाम से, उसका लास्ट नेम लेवाल, वो बता रहा था कि उनसे मेरा मुलाकात, अब वो फौत हो गया उसका, तो उसको उससे मेरा मुलाकात हुआ, मैंने कहा कि मैं अफगानिस्तान आया हूँ और अब अफगानिस्तान में क्रिकेट को आगे बढ़ाना है और क्रिकेट को जो है रजिस्ट्रेशन करना है और मैं आगे बढ़ा दूंगा इंशाल्लाह मैं अपने। तो मैंने जब उसको ये कहा, उसने कहा कि तुम पागल हो, अभी देखो आपको आवाज़ आ रहा है। मैंने कहा, उसने कहा कि कितना बड़ा लड़ाई, अभी बड़ी बड़ी हथियार वो जो है एक दूसरे के खिलाफ, आप इस तरह करो, आप अभी इमिडिएटली काबुल से निकलो और जाओ वापस पेशावर। मैंने कहा मैंने नहीं जाना है। फिर उसने एक चीज़ किया कि मुझे एक लेटर मैंने रखा है अपने
3: अच्छा
10: पास। तो एक लेटर दिया, उसने कहा कि तुम जाओ अफगानिस्तान के नाम पे पेशावर में अफगानी जो रिफ्यूजी जो भी है आप इकट्ठा करो, क्रिकेट उधर से स्टार्ट करो। तो वैसे ही मैंने किया।
3: ओके,
10: तो इधर से लेटर लिया और पेशावर में शाही बाग में उस्मानिया ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड है, तो वो मैंने लिया और अखबारों में जो है मैंने अनाउंसमेंट दिया कि हम अफगानिस्तान का क्रिकेट बना रहे।
3: अच्छा,
10: तो काफ़ी लोग आ गए ट्रायल में, तो हमने थोड़ा पूरा ट्रायल लिया। फिर काबुल आना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन हमने उन उधर अफगानी लोगों के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया किया और नेट प्रैक्टिस उनके लिए, खाना पीना के सब कुछ उनके लिए बनाया, क्योंकि हमारा बिजनेस का लेवल थोड़ा अच्छा था तो इन लोगों के लिए वो हमने बनाया। तो 1997 में जब गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो उस वक्त जो रिजीम है अभी इन लोगों का फर्स्ट स्टार्ट गवर्नमेंट आया
3: जी,
10: तो अभी जो फाइनेंस अभी जो प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ द
3: मिनिस्टर्स
10: है, تو یہ ملا محمد حسن یہ اسی وقت کئی دن بیمار تھا اور ہمارے گھر میں پشاور میں تھا, تو ان کو ہم نے بتایا کہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, تو اس نے بولا کہ یہ کیا ہے یہ مت کھیلو. میں نے کہا ہم کھیلتے. تو جب یہ گورنمنٹ آیا تو ان کے جو اس وقت یہ وائس یعنی کیا بتاؤ کہ وائس منسٹر یعنی ڈپٹی منسٹر
3: جی,
10: تو میں ان کے پاس افغانستان کیپٹل میں گیا اور میں نے کہا کہ میں وہی اس فلاں جی صاحب کا آدمی بیٹا ہوں, تو آپ مجھے اس نے پہچان لیا. میں نے کہا اس نے اسی وقت کہا کہ ہاں آپ آئے ہو اور کرکٹ کے لیے آئے ہو.
3: میں نے کہا
10: ہاں کرکٹ کے لیے آئے ہو. تو ہم نے سجیشن اور وہ جو رولز ریگولیشن کے مطابق ہم نے وہ منسٹری آف اسپورٹس سے سجیشن بنایا آفیشلی اور لایا, انہوں نے سائن کر کے اور کرکٹ کو ایکسیپٹ کیا. اور اس کے بعد ہم نے افغانستان میں رجسٹریشن ملا اور ہم نے آئی سی سی کے لیے کافی ملکوں سے رابطہ کیا اور کافی ملکوں کے کانسٹیٹیوشن ہم نے منگوایا, اور وہ کانسٹیٹیوشن دیکھ کر افغانستان کے حالات دیکھ کر پھر ہم نے سلولی سلولی جو ہے کانسٹیٹیوشن بنایا اور آئی سی سی کے ساتھ کانٹیکٹ ہم نے کیسے کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو عجیب لگے گا, ہمارے کارپیٹ کا کمپنی تھا.
3: اچھا,
10: ہم کارپیٹ بناتے تھے بغیر ہم جو کرنسی ایکسچینج کام کرتے, تو بڑے کمپنی تھا, ہم 500-600
3: ماشاءاللہ
10: لوگ اس میں کام کرتے تھے. تو ہم نے کیا سوچا, میں نے یہ سوچا کہ ایک انگریز جو ایک کمپنی کے ساتھ اس کا پارٹنرشپ تھا, تو کابل میں جو ہمارا گراؤنڈ تھا تو ایک وہ راستے پہ جا رہا تھا تو اس نے کرکٹ دیکھا, وہ انگلینڈ والا تھا.
3: اچھا,
10: ہاں برٹش تھا.
3: اوکے,
10: تو وہ انڈر 19 انگلینڈ وہ کھیلا تھا.
3: اوکے,
10: جب اس نے دیکھا کہ کرکٹ کھیل رہے تو اچانک اس نے گاڑی روکا اور آ گیا, میں بھی ادھر گراؤنڈ میں تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا میں نے اپنا انٹروڈکشن کیا, تھوڑا پوڑا انگلش اس وقت بھی مجھے آتا تھا, تو میں نے انگلش میں اس سے بات کی. اس نے کہا کہ تم, میں نے کہا میں ایم پریزیڈنٹ آف افغانستان کرکٹ فیڈریشن اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش دا کرکٹ گیم ان افغانستان. اور میں نے ایک ٹاپک اس کو بتایا کہ آئی تھنک دس از دا اونلی وے ٹو سیو دا افغان یوتھ, ٹو سیو دا افغان پیپل,
3: جی بالکل,
10: بائی اسپریڈنگ اسپورٹس ان افغانستان.
3: ایبسولیوٹلی.
10: تو ان کو یہ بہت پسند آ گیا. اس نے کہا کہ کل ہم آپ ہمارا مہمان ہے. تو وہ انگلینڈ جا رہا تھا تو میں نے کارپیٹ بنایا, اے سی سی, آئی سی سی, آسٹریلیا, پاکستان.

0: पसंद आ गया। उसने कहा कि कल हम आप हमारा मेहमान है। तो वो इंग्लैंड जा रहा था तो मैंने कारपेट बनाया ACC, ICC, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, काफ़ी मुल्कों के लिए कारपेट बनाया और रात दिन बच्चों को बोला कि इस पे काम करो। उसमें क्रिकेट ग्राउंड बनाया, पिच बनाया, जिस मुल्क को भेजना है उसको हैंड वोविंग उसका नाम लिखा। तो उसके लेटर जब ये इस आदमी ने मैंने ये कारपेट दिया उनको भेजा, उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सबसे बहुत प्लस और उसने उस लेटर में लिखा है मैं आपको भेज दूंगा फिर आप देख ले, मैंने रखा है मेरे पास है। तो उसने कहा कि टोटली अनएक्सपेक्टेड द गिफ्ट यू सेंड दैट अनएक्सपेक्टेड। सो उन लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, कांटेक्ट शुरू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन का तबादला, नज़रियात का तबादला। 3 साल इस रोटेशन में हमने 3-4 प्रोविंशियल टूर्नामेंट बनाया, अच्छा पिच बनाया, वो तो अलग अलग स्टोरी है। तो 2000 में हमने एक टूर किया पाकिस्तान जो मैं कैप्टन भी था
1: जी,
0: और मेरा परफॉर्मेंस भी ऐसी है कब वो दिखलावा में ना आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेशावर कम्बाइन, इस्लामाबाद कम्बाइन के ख़िलाफ़ किया। तो उधर से ICC के जो रिप्रेजेंटेटिव आया था उन्होंने ICC को बताया कि दे आर टोटली वर्ल्ड क्लास क्रिकेट टीम। तो ICC ने भी
1: एक्सेप्ट कर लिया
0: और ICC और ACC का दोनों का मेंबरशिप एक ही दिन पे अनाउंस हुआ।
1: क्या बात,
0: उसके बाद स्टोरी बहुत ज्यादा है पर तो मैंने आपको
1: उसके बाद ये जो शुरुआती स्टोरी है जाहिर सी बात है यू नो ये बहुत कम लोगों को पता होती है और हम मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ आप और आप भी जो है आराम से समय निकाल के आए हैं और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट की स्टोरी क्या है। आज हमें राशिद दिखते हैं, आज हमें गुरबज दिखते हैं और इतना बड़ा बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर जो खेलते हैं वो बड़ा कमाल होता है, पर जब उनकी कहानियाँ, उनके पहले जो आए थे उनकी कहानियाँ और जहाँ से शुरू हुई है ये कहानी अगर कोई समझे तो उसमें समझ में आता है कि आज के जो खिलाड़ी हैं वो सारे इस वजह से आज खेल पा रहे हैं, आज इस वजह से वो पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है, आपने मेहनत की है। यू नो एक अफिलिएट मेंबर नेशन बनना आज की तारीख में भी देखें दुनिया भर में काफ़ी सारे अफिलिएट मेंबर नेशंस हैं क्रिकेट के, ICC के। अफिलिएट नेशन से एसोसिएट नेशन बनना, इसमें फंडिंग अलग मिलती है। एसोसिएट नेशन से 4 साल के अंदर फुल मेंबरशिप, ये जो जर्नी थी 4 साल की जो जर्नी थी, ये जर्नी किस तरह से हुई है ये ज़रा इससे थोड़ा कुछ बताएं।
0: असल में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब 2001 में जो ICC और ACCA का एफिलिएट मेंबरशिप हो गया, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस के बजाय कि हम फुल मेंबरशिप पे फोकस करें, उसका भी मैं बता रहा हूं, वो भी बता दूंगा कि फुल मेंबरशिप कैसे हुआ और उसके लिए क्या हुआ और किसने किया, तो वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एफिलिएट मेंबरशिप से शुरू होकर फौरी जो है 2003 में हमने ACC ट्रॉफी खेला
1: जी,
0: U17 खेला इंडिया में हैदराबाद में
1: राइट,
0: उसके बाद मलेशिया में ACC ट्रॉफी खेला और अचानक ACC ट्रॉफी से हमने हमारी टीम ने इतना परफॉर्मेंस किया कि हमने डिवीजन ICC जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स है डिवीजन 5 से शुरू होता है 4-3-2। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि न स्पॉन्सर थे, न कोई ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना कुछ भी नहीं थे। तो ये मुझे बता दो कि ये जर्नी कैसे हुआ कि हमने काफी मुल्कों ने 15-20 साल में ये 4 डिवीजन जो है क्रॉस किए और हमने एक ही साल में डिवीजन 4, डिवीजन 5, डिवीजन 5, डिवीजन 4, डिवीजन 3 और डिवीजन 3 से परफॉर्मेंस होकर 2 की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट डिवीजन 1 हम खेला और डिवीजन 1 में हमने वन डे स्टेटस वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग 2011 खेला। ये
1: क्या बात है,
0: ये अजीब सी बात है कि पैसे भी नहीं थे, स्पॉन्सर भी नहीं थे, कोई था कुछ लोग थे और कोई था जो खर्च करता था और एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। मैं अगर हर एक दिन का स्टोरी आपको बता दूं तो आप रोना पड़ोगे।
1: मैं तो इनफैक्ट यही चाहता हूं कि आज का पूरा शो हम साथ में बैठ के ऐसे ही बात करते रहें। आज का शो क्या, मैं तो चाहता हूं कि शो खत्म होने के बाद भी मैं आपके साथ में चाय पे बैठूं और हम अफगानिस्तान क्रिकेट की बात करें, क्योंकि मेरा अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ 2017 में। जब अफगानिस्तान का आयरलैंड के साथ और अफगानिस्तान जिम्बाब्वे

0: ये दो सीरीज हुई थी यूएई में, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में दो सीरीज हुई थी, और वो दोनों सीरीज का कमेंट्री करने का जो है मुझे अवसर मिला, मौका मिला मुझे, तो मैं कमेंट्री कर रहा था, टीवी कमेंट्री कर रहा था मैं। और जब मैं कमेंट्री कर रहा था, मैंने काफ़ी प्लेयर्स के बारे में रिसर्च किया, पढ़ाई करी, समझा कि क्या है, क्या बैकग्राउंड है। राशिद, मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें राशिद को देखो तो बिल्कुल ऐसा छोटा बच्चा सा दिख रहा है वहाँ पर। अब 2017 की बात है, 9 साल पहले की बात है, तब जो कहानी थी मुझे वो टाइम पर मुझे लगा कि अफगानिस्तान के चैलेंजेस जो रहे हैं वो शायद ही कोई टीम, शायद ही कोई मुल्क इतना, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद इतना ऊपर आ पाए, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल पाए। और आज जब मैं देखता हूं कि वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, बड़ी बड़ी टीमों के सामने ऐसे खड़े होके, शेरों की तरह खड़े होके दिखाया कि भाई हम पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में, T20 वर्ल्ड कप के पहुंच गए, कोई छोटी बात नहीं है ये। इसमें हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं आगे। आज की तारीख में, पिछले साल दिसंबर की बात है जब हम और आप मिले थे, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का अनाउंसमेंट जब हुआ था, तो वो सारी चीज़ें, और आज हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां पर हम अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। APL पहले भी हुआ था, फिर एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, और अब फिर से जो है हम एक बड़े लीग के दौर पर आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का माइंडसेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, ये थॉट कहां से आया, मुझे ये बताएं।
1: हाँ, अब जो पहले आपने सवाल किया, मैंने अभी तक वो जहन में रखा कि वो ऐसा ना हो जाए कि लोग ये सोचे कि सारा कुछ सिर्फ ओनली मैंने किया तो गलत है। अब पहले तो सब कुछ अल्लाह करता है
0: जी,
1: उसके बाद इंसान, कोई भी इंसान जरिया बनता है। तो जरिए, जब मैंने जिस तरीके से मैंने स्टोरी बताया, तो साथ काफ़ी लोग हैं, और एक का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी लोग हैं, एक का नाम अगर
0: दूसरे
1: नाराज हो जाएगा। मैं सबसे बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, और सबने काफ़ी प्लेयरों ने, यानी जितने भी हमारे पुराने प्लेयर है, आज तक जितने भी प्लेयर है, हर प्लेयर ने अपना हिस्सा लिया। जैसे शाहपुर अभी बीमार पड़ा हुआ है,
0: शाहपुर की हालत देख के बड़ा बड़ा दिल दुखता है।
1: मैं आपको बता दूं, मेरे कैप्टनसी का प्लेयर है
0: जी,
1: और मुझे पता है कि इन प्लेयरों ने, और नबी के शमूल जितने भी उस वक्त प्लेयर है, हर प्लेयर ने कितना तकलीफ किया। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था तो वो लोग भी अपने खुद से तो कुछ खर्च कर रहा था,
0: जाहिर सी बात है,
1: अपने जेब से ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो उन लोगों का वो खिदमत और वो हेजिटिंग, यानी वो इन लोगों के जो बहादुरी थी, और वो दिखा दिया, और अफगानिस्तान के लिए वो बाइस बना मेरे लीडरशिप में। तो सबकी खिदमत जो है काबिल कदर है, और आप फुल मेंबरशिप की बात आप जो ने किया, जो एसोसिएट मेंबर है, फिर बाद में तो एसोसिएट मेंबरशिप जो है वो टीम के परफॉर्मेंस पे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस वक्त जो भी था, क्योंकि इधर कुछ दर्द की बात है
0: जी,
1: जब हमने वन डे स्टेटस लिया
0: जी,
1: और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए 2011 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड के लिए क्वालिफाई भी किया। तो इससे पहले जब मैं अपने मुल्क पहुंचूं कि मेरा गर्दन में
0: हार लगाएंगे,
1: फ्लावर डाले, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने मुझे बिल्कुल क्रिकेट से हटाया, और किसी अपने मिनिस्टर वगैरह को लाया, और क्रिकेट में ये तो दुख की बात है
0: जी।
1: फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी आया उन्होंने भी काम किया
0: बराबर,
1: मेरे हक में जो भी किया नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने जो भी अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ किया मैं उसे थैंकफुल कर रहा हूँ। लेकिन 2013 में जो मैं, काफ़ी आदमी थे, लेकिन एक आदमी जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे फुल मेंबरशिप में, उसने काफ़ी काम किया, जो शफीक स्थानिक जय जो से होते, वो 14-15 साल की उम्र में एक लड़का 1999 में जो अफगानिस्तान के प्रोविंशियल टूर्नामेंट हो रहा था, ये 14-15 साल का था, जो इन्होंने फास्ट सेंचुरी बनाया।
0: अच्छा,
1: तो ये बहुत अच्छा बैट्समैन था।
0: हाँ,
1: तो उस वक्त ये मेरे भाई की तरह, छोटा भाई की तरह, वो क्रिकेट, वो नहीं चाहते थे कि क्रिकेट में काम करे। बस अचानक जब मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से दुख की बात थी, मैंने जो कहा कि हमको हटाया, और क्या यार हमें क्या बोलते हैं, यानी जो फ्लावर्स है,
0: हार चढ़ाना चाहिए जी,
1: वो चढ़ाना चाहिए थे कि यार 17-18 साल हमने अपने जिंदगी बर्बाद किया। तो फिर ये हुआ, लेकिन फिर भी क्रिकेट आगे बढ़ा। तो प्लेयर्स پلیئرز کی خدمت, پلیئرز کی ایکٹیویٹی اور پلیئرزوں کی پرفارمنس,
0: جی
1: وہ اس کے باعث بنی کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھے. کچھ لوگ ایسے تھے جیسے میں نے نام لیا, شفیقستانک زیکا وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہے کچھ نہ کوئی بھی ناراض نہ ہو جائے, تو انہوں نے جو بھی کچھ کیا تو اس کا وجہ یہ ہے سب سے پہلے پلیئر, پلیئر کے پرفارمنس اور اچھے پلیئر,
0: جی بالکل,
1: جیسے راشد نبی وغیرہ آ گیا تو فل ممبرشپ بھی مل گیا.
0: کیا بات
1: تو پھر بھی بتاؤ, ہر ایک دن کی افغانستان کی کرکٹ اسٹوری بہت الگ ہے, لیکن میرے پاس جو اسٹوریز ہے وہ آپ کے اور یار آپ کو رلا دے گا.
0: کیا بات ہے, تو ایک کام کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہم آگے کی کہانی سنتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کی ہسٹری سمجھ لی, اب فیوچر دیکھتے ہیں
1: انشاءاللہ.
0: ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک, رائٹ ہیئر آن ٹی ایس بی. الانگ سائڈ اس از دا فاؤنڈنگ ممبر, دا فاؤنڈر آف افغانستان کرکٹ, دا فادر آف افغانستان کرکٹ, مسٹر الاداد نوری, رائٹ ہیئر آن ٹی ایس بی. آئی ایم نیل اوجا.
2: This is TSB, the home of talk, sport and business. This is Talk 100.3.
3: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
4: Yeah, right. I wish.
3: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences, Alforjan, before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
4: And the apartments?
3: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
4: I'm going now.
3: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
5: Yo, it's Alfred. You see? Insurancemarket.ae. Car, health, home, life, travel, some business, to 20,000 reviews. We've got the crew. Insurancemarket.ae. Largest in the UAE. Insurancemarket.ae.
2: TSB. Business advice, tips and resources. Talk 100.3.
6: I'm Maura Fogarty with your business update. Elon Musk's SpaceX has officially filed for what is expected to be the largest initial public offering in Wall Street history. Mr. Musk plans to raise $75 billion. In a departure from standard practice, SpaceX says it wants to sell its shares at $135 each. Greg Martin is a managing director at Rainmaker Securities. The U.S. Department of Agriculture has confirmed a case of New World screwworm in Texas. The department said it was taking immediate steps to contain and eradicate the parasite, which can devastate livestock herds. Experts have warned that an outbreak could cause huge losses to the cattle industry in Texas and push up beef prices in the U.S. Cuba's central bank says Visa and MasterCard payments in the country will be suspended from Saturday because of sanctions imposed by the United States. It said a foreign partner that had previously processed card transactions for Cuba had decided to limit operations after the executive order by Washington on May 1st that broadened sanctions on commerce with the Caribbean nation. The U.S. order is another blow to Cuba's economy and its struggling tourism industry. And that's your business update.
2: This is Talk 100.3. This is Fan Network News from the BBC.
7: BBC News with Moira Alderson. The leader of Hezbollah has emphatically rejected a ceasefire between Lebanon and Israel, brokered by the United States. The deal allows Israel to continue its offensive in southern Lebanon, but requires Hezbollah, which wasn't part of the talks, to withdraw. The Iran-backed group has described the deal as futile, humiliating and disgraceful. Meanwhile, Israeli strikes in Gaza, which is also under a nominal ceasefire, have killed 11 people, according to health officials. They include five members of a single family. Pakistan says India is weaponizing water, with two recently announced projects affecting a shared river. Last year, India suspended a decades-old resource-sharing treaty. The Democratic Republic of Congo is the latest country to outline a voluntary repatriation program for its citizens amid ongoing attacks on foreigners in South Africa. Ghana and Malawi have announced similar schemes. 1 week before the World Cup tournament begins, FIFA has banned fans from bringing refillable water bottles into venues. Health experts have criticised the last-minute change. The French-Iranian author and artist Marjan Satrapi, who's best known for the book and film Persepolis, has died at the age of 56. The memoir portrays her childhood in Tehran after the Iranian Revolution. BBC News.
2: Fan Network News from the BBC. Talk music. Brought to you by Insurance.

0: आता है पसीना,
1: बाप रे
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से,
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: This is Talk 100.3.
1: आग कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें। कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।
1: Talk 100.3

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फ्लेक्स। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।